0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लैक के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल और पोम्फ्लेमोसिस के सर शिवसागर राम गुलाम अस्पताल तथा थ्रियोले और फ्लोयाल के मेडिक्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यू कोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। सरकार देश की बायो सिक्योरिटी के लिए संभावित खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल 1 जुलाई को जारी कम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज अपेक्स LSS सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं। इस बात का ध्यान

0: रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में दो विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनमें से जिंदा लोगों को निकालने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह खासकर पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश हो सकती है और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती हैं। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:46 पर सूर्योदय, शाम को 5:41 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: ভোর কি বেলা টাসগি ভারি শুরু আজ।
1: चलिए श्रोताओं, 6:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। गुरुवार का दिन है आज, जुलाई महीने की दूसरी तारीख, साल 2026। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। अ वेरी गुड मॉर्निंग, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए आपके लाए हैं एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। तो चलिए, आज का दिन जो है आपके लिए एकदम खुशगवार हो। जो दिन प्रभु के स्मरण से शुरू होता है वह मन को शांति और जीवन को नई दिशा अवश्य देता है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दिव्य दृष्टि कार्यक्रम आपके लिए।
2: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।

अन्तः प्रविश्य ममवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज की चर्चा हम सत्संग पे कर रहे हैं। महाभारत कहता है कि वस्त्राण्यपस्तिलान भूमिम गंधो वासयते यथा पुष्पाणाम् अधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः मोहजालस्य योनिर्हि।

एव समागमः अहन्या हनि धर्मस्य योनिः साधु समागमम्। जिस प्रकार फूलों के संसर्ग से उनकी गंध वस्त्र जल तिल और भूमि को सुवासित कर देते हैं, वैसे ही संसर्ग से होने वाले गुण भी अपना असर करते हैं। विषयासक्त मूढ़ पुरुषों का समागम मोह जाल की उत्पत्ति का कारण है, और प्रतिदिन साधु महात्माओं का समागम करना धर्म की उत्पत्ति का हेतु है। तस्मात् प्राज्ञेश्च वृद्धेश्च सुस्वभावेस्तपस्तभिः सद्भिश्च सह संसर्ग कार्यः शमपरायणैः। इसलिए जो ज्ञानी महात्माओं और अनुभवी वृद्धों और उत्तम स्वभाव वाले तपस्वियों और परम शांति को देने वाले सत्पुरुषों का संसर्ग रखना चाहिए। श्रोताओं, इसी तरह से कुसंग मनुष्य के उत्थान और पतन के जितने कारण हैं, उनमें संग एक प्रधान कारण है। संग के अनुसार ही मनुष्य का मन बनता है, और मन के अनुसार ही मनुष्य से क्रिया होती है, एवं क्रिया के अनुसार ही उसका फल मिलता है। अच्छे हृदय का मनुष्य भी नीच के संग से नीच मन वाला होकर के गिर जाता है, और असदाचारी मनुष्य भी उत्तम संग पा करके असदाचार से छूट करके महात्मा बन जाता है। परंतु इतना याद रखना चाहिए कि बुरे संग का प्रभाव साधारण मनुष्य पर जितना शीघ्र विशेष रूप से पड़ता है, उतना शीघ्र और उतनी मात्रा में उत्तम संग का प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रोताओं, कारण ये है कि प्रकृति स्वभावतः अधोगामिनी है, इसलिए जैसे जल स्वभाव से ही नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों में स्थित पुरुष भी स्वभावतः पतन की ओर ही जाता है। यदि उसमें कुसंग की सहायता मिल जाती है तो जैसे ऊपर से गिरता हुआ मनुष्य धक्का लग जाने पर और भी जोर से गहरे गड्ढे में गिरता है, वैसे ही कुसंग के धक्के से मनुष्य का पतन बहुत और शीघ्र ही हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। विषयों की आसक्ति, जन्म जन्मांतरों के और दूषित जो संस्कार होते हैं, वातावरण का प्रभाव आदि, ऐसे कितने ही कारण हैं जो उत्थान के मार्ग में सदा ही बाधक बने रहते हैं। इसीलिए अच्छे संग का असर साधारण मनुष्य पर देर और कम मात्रा में होता है। पतन तो निर्बलता में, अंधेरे में या अनायास ही हो जाता है, परंतु उत्थान में बल की, प्रकाश की और प्रयास की आवश्यकता होती है। पतन ध्वंस है, उत्थान निर्माण है। ये सभी जानते हैं कि ध्वंस सहज है, परंतु निर्माण बहुत कठिन है। विनाश और जरा सी सहायता से भी और बहुत काम कर देती है, परंतु निर्माण में बहुत सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये सिद्धांत मानना पड़ता है कि साधारण मनुष्य पर कुसंग का असर बहुत शीघ्र होता है और सत्संग का बहुत देर से। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। श्रोताओं, कुसंग से केवल बुरे आचरण और बुरे भाव वाले मनुष्य का संग ही नहीं समझना चाहिए। इंद्रियों का और मन का कोई भी विषय जो हमारे अंतःकरण में दुष्ट भाव, दुष्ट विचार और विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके भगवान के पवित्र पथ में बाधा देने वाला या उससे गिराने वाला हो, उसी को कुसंग समझना चाहिए। श्रोताओं, जैसे स्थान, अन्न, जल, परिवार, आस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका के कार्य और उपासना पद्धति, कम से कम ये 10 चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे होने पर हमारे अंतःकरण को ऊँचा और अच्छा बना सकती है।

और बुरा होने पर बुरा बना करके हमको घिरा सकती है। इसीलिए जिस वस्तु से जरा भी पतन की संभावना हो, ऐसे किसी भी चेतन या जड़ वस्तु को जहाँ तक हो सके श्रोताओं नहीं देखें, ऐसी कोई बात न सुने, ऐसी कोई चर्चा न करें, ऐसे किसी वातावरण में न रहें, ऐसा कोई अन्न न खाएं, ऐसा कोई साहित्य न पढ़ें, ऐसी कोई आजीविका का कार्य न करें और न ऐसी कोई उपासना ही करें। कुसंग का ज्यों ज्यों प्रभाव होता है, त्यों ही त्यों मनुष्य की बुद्धि वैसे ही बनने लगती है। यहां तक कि सात्विक पुरुषों की बुद्धि भी कुसंग के प्रभाव से राजस भावात्पन्न होकर के बुरे और अच्छे बुरे यथार्थ का निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। और उसी राजस बुद्धि पर जब कुसंग का विशेष प्रभाव पड़ जाता है श्रोताओं, तब तो वो विपरीत ही निर्णय करने लग जाती है। भगवद गीता कहती है ना कि या धर्म मय धर्म चौ कार्यम कार्यायमेव चौ अथ अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थतामसी। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ तक जो है, जो इस अवस्था में मनुष्य पहले जिस बात को बुरी समझता था उसको अच्छी समझने लग जाता है, फलतः उसको अपने पतन का और पता ही नहीं चलता है श्रोताओं, बल्कि वो पतन को ही अपना उत्थान समझने लग जाता है और प्रयत्नपूर्वक बड़ी तेजी से पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। यद्यपि श्रोताओं वातावरण और अन्न जलादि के संग का प्रभाव कम नहीं पड़ता है, फिर भी इन सब से अधिक प्रभाव मनुष्य के संग का पड़ता है। इसीलिए साधारणतया महात्मा पुरुषों का संग और जो ऋषि लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका जो संग होता है वही वास्तव में संग है, और बुरे मनुष्यों के संग को ही कुसंग कहा जाता है। इस और इस प्रकार से श्रोताओं, अगर यदि जीवन का कल्याण चाहते हैं तो हमेशा से सत्संग कीजिए। भगवान कहते हैं ना अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस बुद्धि से धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय नहीं होता है, वही बुद्धि तो राजसी है। और जो तमस से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को मानती है श्रोताओं और सभी बातों में विपरीत निर्णय करती है, वही वास्तव में तामसी है। श्रोताओं, कुसंग से क्या होता है? नंबर एक, पर चर्चा पर निंदा में प्रीति होती है, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बात करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आ जाता है। नंबर दो, विषयाशक्ति और भोग कामना बढ़ जाती है। नंबर तीन, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इन छह और भीतर के शत्रुओं का बल बढ़ता है तथा इनकी नींव जो है बड़ी मजबूत हो जाती है। चौथा, दंभ दर्प अभिमान असहिष्णुता है ना, अविवेक असत्य कायरता निर्दयता वैर हिंसा आदि दुर्भाव और दुर्गुणों की उत्पत्ति तथा उसकी वृद्धि होने लगती है, उसकी वृद्धि हो जाती है। और चौथा जो है, पांचवा और राग द्वेष इच्छा वासना और अहंकार की वृद्धि हो करके और अज्ञान का पर्दा और भी घना और बहुत मजबूत हो जाता है। छठवां क्या होता है कि भांति भांति के दुराचार और पाप जीवन में बढ़ने लग जाते हैं, जिनके फलस्वरूप दुख दरिद्रता आदि व्याधि निंदा अपमान विषाद शोक तथा बारंबार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और भीषण नरक की और बहुत सारी यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। इसीलिए श्रोताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि यद सद्भिः पथि पुनः शिशनोदर कृतोद्यमे अस्थितो रमते जन।

0: ओ बिशति पूर्व मत। श्रोताओं, आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है। इस प्रसंग को लेके पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

0: चलिए श्रोताओं, अभी आप दिव्य दृष्टि कार्यक्रम सुन रहे थे आचार्य सकलानी जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के बाद आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले वाकवा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है विलीबी रोड के रहने वाले निवासियों को, सूचित किया जाता है कि शनिवार 4 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है वाकवा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है सायद हुसैन रोड फेनिक्स के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है सायद हुसैन रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, मौसर मगोबर्डिन फ्लैट सनासी और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 5 जुलाई 2026 जी हाँ सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:00 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है विलाज डे रिश्तेया के रहने वाले निवासियों को, वैसे विलाज डे रिश्बुआ और ब्रिटानिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 2 जुलाई 2026 को सुबह 9:00 बजे से लेकर 5:00 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: तो चलिए श्रोताओं, इस हिंदुस्तानी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके लाए है एक भावगीत। बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म रफ्तार से लिया गया। श्रोताओं, जिंदगी हमें सिखाती है कि हर सुबह का अपना एक, वैसे हर सुर का अपना एक महत्व होता है। कभी खुशी तो कभी गम, तो कभी दुख तो कभी सुख, तो बस हमें यही सीख कर ले जाना होता है। हमारी ज़िंदगी में हमें चलते ही जाना है और कठिनाई क्यों ना हो हमारी ज़िंदगी में, इसको हमें डट के सामने करना है। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लाए हैं। हम आपको इशारा करें कि कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं और आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन सकेंगे। मिलेंगे वापस 7 बजे सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घर में लाइए, सुबह के ठीक साढ़े छह बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। इलाकाई अस्पतालों और कुछ मेडिक्लिनिक्स के बाद जल्द ही न्यू गोल्फ एरिया हेल्थ सेंटर में एक डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर की स्थापना की जाएगी। मकसद है जनता को बेहतर इलाज और सेवाएं प्रदान करना। मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला एक जहाज कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। MPA, MRA और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। आज 2 जुलाई से वाकुआ के जॉन कैनेडी एवेन्यू पर स्थित तकामाका पुल नए सिरे से खुल रहा है। इस बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने कल क्यूपिप में काजियन पुल के दूसरे चरण के उद्घाटन के दौरान की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए। मरने वालों की संख्या अभी तक 2300 पार कर गई। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लैग के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल और पॉम्पलेमोसिस के शिवसागर राम गुलाम अस्पताल तथा थ्रियोले और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक्स के बाद जल्द ही अब न्यू गोल्फ के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। पिछले कुछ समय से ये नोट किया गया है कि सेंट जॉन नाइट शेल्टर में अब सबसे ज़्यादा 19 से 45 साल की उम्र के बीच के लोग रहते हैं। बेघर होने की समस्या पहले ज़्यादातर बुजुर्गों से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब ये सामाजिक समस्या कम उम्र के लोगों के बीच भी देखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो मॉरिशस में मुश्किल हालातों में रहने की तेजी से बढ़ती स्थिति दर्शाती है। इस वास्तविकता के बीच सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। उन्हें

0: लगातार बढ़ती मांगों और मदद की ज्यादा जटिल आवश्यकताओं से निपटना पड़ रहा है। छवि बाचू, आशिता रघु।
1: Le plus jeune SDF qui est là dans l'abri de Saint-Jean, c'est il a 19 ans.
2: ये एक ऐसी स्थिति है जो समाज से गंभीर चिंता और जागरूकता की मांग करती है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों और असुरक्षा का सामना कर रही हैं। Saint-Jean Night Shelter की जिम्मेदार Jean Messandion के अनुसार यहां रहने वाले लोगों की प्रोफाइल में उल्लेखनीय बदलाव आया है। पहले अधिकांश निवासी 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते थे, लेकिन अब कम उम्र के बेघर युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
1: 75% du résident,
2: यहाँ 75% रहने वाले 18 से 45 वर्ष के हैं। ऐसी स्थिति से भी बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप अलग अलग शादियों में परिवार बसा चुके हैं, ऐसे में वे शराब के लत में पड़ जाते हैं। ऐसे भी मामले हैं जहां घरेलू हिंसा या सेपरेशन के बाद बच्चे या पत्नियां सड़क पर आ जाती हैं। बेघर लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस कारण शेल्टरों पर दबाव बढ़ गया है और विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में सभी जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो गया है। Saint-Jean Night Shelter में निवास की अवधि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता और उसके पुनर्वास की प्रगति के आधार पर लगभग 18 महीने से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है। कभी हमें दुख होता है कि यहाँ 40 की संख्या तक और पॉटरीज के लिए 26 की संख्या तक आने के बाद हमें लोगों को मना करना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं है। हालांकि ये केंद्र केवल रात बिताने के लिए आश्रय उपलब्ध नहीं कराता, वर्ष 2025 से 2030 की अपनी रणनीति के तहत यहाँ रहने वाले लोगों के पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। जिन लोगों व नौजवानों को किसी तरह की लत है, उन्हें एक समय तक के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटरों में भेजा जाता है, जिसके बाद वे पेशेवर जगत में भी जगह वापस पाने की कोशिश करती हैं और फिर एक घर की तलाश करना पड़ता है जहां 3 दोस्तों के साथ रहा जा सके। ये चिंताजनक स्थिति हमें बेघर लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने का संदेश देती है। पूर्वाग्रह और सामाजिक कलंक से ऊपर उठकर उन लोगों का साथ देना और उनका उत्साह बढ़ाना आवश्यक है जो अपने जीवन को फिर से संवारने और समाज की मुख्य धारा में लौटने का प्रयास कर रहे हैं।
0: मंगलवार को राज्यसभा में अप्रोप्रिएशन बिल बिना सुधार के पारित किया गया, जिसे बजट 2026-2027 मंजूर कर लिया गया। इस बजट में खाद्य सुरक्षा मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। 25x35 फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार ने अगले 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% हिस्सा स्थानीय स्तर पर ही पैदा करने और आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य तय किया है। फागे की सीईओ माधवी मधु के अनुसार ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उनका कहना है कि मॉरिशस अभी अपने इस्तेमाल का 70% से ज्यादा खाद्य सामान आयात करता है तथा बीज, खाद और फिटोसैनिटरी उत्पादों के लिए काफी ज्यादा विदेशी स्रोतों पर निर्भर करता है। उनका मानना है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ज्यादा अनुसंधान, नवाचार, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन तथा खेती के लिए जमीन सुलभ करने की जरूरत पड़ेगी। शैली निर्बन, आशिता रघु।
3: Pour atteindre cette vision, nous devons investir davantage dans la recherche et l'innovation.
2: इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें नवाचार और खोज में निवेश करना होगा। अंत में हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के राष्ट्रीय उत्पादन तंत्र का विकास करना आवश्यक है। साथ ही जैविक कचरे के रिसाइकल से तैयार कंपोस्ट और अन्य जैविक उर्वरकों के स्थानीय उत्पादन में तेजी लाना भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। अंततः खाद्य सुरक्षा केवल किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, इसके लिए ऐसी समग्र नीति अपनानी होगी जो उत्पादन से लेकर उपभोग तक पूरी खाद्य श्रृंखला को समाहित करे। इस दृष्टिकोण में पोषण, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता तथा आर्थिक लचीलापन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।
0: सरकार देश की बायो सिक्योरिटी के लिए संभावित खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल 1 जुलाई को जारी एक कॉम्युनिके के मुताबिक मुजाम

0: मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज अपेक्स एलएसएस सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु न उतारा जाए। शैली नियबन, आशिता रघु।
1: पशु चिकित्सा सेवा डिवीजन के अनुसार मॉरिशस में इन मवेशियों को उतारने की अनुमति देने के लिए कोई भी पशु चिकित्सा परमिट जारी नहीं किया गया है, इसलिए इन पशुओं के आयात या उन्हें देश में उतारने का कोई भी प्रयास वर्तमान कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध कार्रवाई से पशुओं के स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा देश की खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस संभावित खतरे को देखते हुए निगरानी व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के कस्टम टैक्स विभाग तथा नेशनल कोस्ट गार्ड को किसी भी अवैध रूप से मवेशियों को देश में उतारने के प्रयास को रोकने के लिए तैनात किया गया है। सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में दोहराया है कि राष्ट्रीय जैव सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जो भी व्यक्ति बिना अनुमति मवेशियों का आयात, उन्हें देश में उतारने या इस प्रक्रिया को सुगम बनाने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
0: अगले 6 से 9 दिसंबर के बीच पाई के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट लगेगा। ये गतिविधि पहले जुलाई महीने के आखिर के लिए निर्धारित थी, लेकिन केंद्रीय अफ्रीका में इबोला महामारी के फैलाव की वजह से इसे कथित तौर पर स्थगित किया गया था। इसका आयोजन मॉरिशस सरकार और कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की मिलीजुली पहल पर किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी नेता, अमेरिकी और अफ्रीकी उच्चाधिकारी, वरिष्ठ व्यापारी, निवेशक और फाइनेंसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मकसद है व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी मजबूत करना। इस गतिविधि के लिए 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स मॉरिशस आएंगे। आज 2 जुलाई से वकवा के जॉन केनेडी एवेन्यू पर स्थित तकमका पुल नए सिरे से खुल रहा है। इस बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने कल क्यूपिक में काजेयन पुल के दूसरे चरण के उद्घाटन के दौरान की। इस पुल का निर्माण 2 चरणों पर किया गया है, जिसके लिए 5 मिलियन रुपए लगाए गए हैं। कई सालों से इलाके के बाशिंदे इस कम चौड़े पुल के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जिसके कारण कई बार विगत में वहां कई हादसे भी पेश आए हैं। पेश है ये रिपोर्ट राजमिला सीतामणि और आशिता रघु के साथ।
1: यहाँ के बाशिंदों का बहुत साथ मिला, क्योंकि वे पिछले 20 सालों से अधिक इस समस्या का सामना कर रहे थे। 2 चरणों में यहाँ काम पूरा किया गया। पहले चरण के अंतर्गत ऊपर का हिस्सा खोल दिया गया था और आज दूसरे चरण की समाप्ति के साथ ये परियोजना संपन्न हुई। लोग संतुष्ट हैं कि इन परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें राहत पहुंच रही है। आज पूरी सुरक्षा में वे इधर चल फिर सकते हैं। इस पुल के माध्यम से लोगों को बहुत सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ से नदी बहती है जो काफी खतरनाक भी है। मैं संतुष्ट हूं कि जो लोगों से वादा किया था उसे हम पूरा कर पाए।
0: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनसे लोगों के जिंदा निकलने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उधर रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर आग लगी है। रशिया यूक्रेन संघर्ष के 4 साल हो गए हैं और कोई शांति वार्ता और कई शांति वार्ता की कोशिशों

के बावजूद संघर्ष थमने के आसार नहीं दिख रहे। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज तड़के सुबह पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:46 पर सूर्योदय, शाम को 5:41 पर सूर्यास्त होगा। समाचारों के आखिर में सुर्खियां। एक बार फिर इलाकाई अस्पतालों और कुछ मेडिक्लिनिक्स के बाद जल्द ही न्यू गोव एरिया हेल्थ सेंटर में एक डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर की स्थापना की जाएगी। मकसद है जनता को बेहतर इलाज और सेवाएं प्रदान करना। मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस कोस्ट अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए कि जहाज से कोई भी अवैध माल या पशु न उतारा जाए। आज 2 जुलाई से वाकवा के जॉन केनेडी एवेन्यू पर स्थित तकामाका पुल नए सिरे से खुल रहा है। इस बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने कल क्यूपिप में की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिया हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शुभ समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 15 कॉशन स्ट्रीट, नंबर 15 कॉशन स्ट्रीट विल्मेन कोचे मिलिटेयर में, कॉशन स्ट्रीट विल्मेन कोचे मिलिटेयर में 52 साल के 52 years old श्री शशि कुमार भवनी ज्योति, श्री शशि कुमार भवनी ज्योति जो शशि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे श्री सावन भवन ज्योति के मकान नंबर 15 कोसों स्ट्रीट विल में कौचे मिलते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया खोस्ताओं सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डियर 1 PM। रॉयल रोड इखवाइयों में, रॉयल रोड इखवाइयों में 82 साल की 82 years old श्रीमती मुनेश्री रामबरन, श्रीमती मुनेश्री रामबरन जो तारा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे के मकान रॉयल रोड इखवाइयों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वो शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। Avenue Rosier नंबर 2 मोंसेल मगाफ्रे ले ओ शेते अरूज में 57 साल के 57 years old जनाब अहमद खलील जनाब जो खलील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए। इनका जनाजा आज दिन के 12:15 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 12:15 बजे के मकान एवेन्यू रोज़िए नंबर 2 मोसल मगाफ़िले ओशेते अरूज से उठाकर अंतिम दफनाने के लिए बामो शौका कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9:15। क्लेफो नंबर 3 वाकवामी, क्लेफो नंबर 3 वाकवामी 80 साल की 80 years old श्रीमती गजरानी जगमोहन पैदाशी नाम रामजादा, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:15 बजे, इनके दामाशी की

किशोर ताकुरी के मकान क्लेफो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1:15 PM। भजन लेन लाल माटी में, भजन लेन लाल माटी में 39 साल के 39 years old श्री युधीश लीलाधर जो सुदेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है कीर्थियाज दिन के दो बजे इनके पिता श्री गुरुलाल लीलाधर के मकान भजन लेन लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। ईस्ट लेन कॉन्डोस काथोबोन में, ईस्ट लेन कॉन्डोस काथोबोन में 65 साल के 65 years old श्रीमती ईश्वरी लक्ष्मण पैदाशी नाम गूर, इनकी मृत्यु हो गई है कीर्थियाज दिन के साढ़े बारह बजे के बेटे श्री मनीष लक्ष्मण के मकान ईस्ट लेन कॉन्डोस काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। कोस्टल रोड पॉइंटो कानोनी में, कोस्टल रोड पॉइंटो कानोनी में 79 साल की 79 years old श्रीमती गुमती पाइडियामा पैदाशी नाम रामचरण जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं कीर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री संजय पाइडियामा के मकान कोस्टल रोड पोतो कानोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी स्थियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। शुमेला पोंप कारोलिन में 74 साल की 74 years old श्रीमती महेंत्री गर्बरन पिताशी नाम चंदू जो महेंत्री नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं कीर्थियाज दिन के ग्यारह बजे इनके बेटे श्री सूरज गर्बरन के मकान शुमेला पोंप कारोलिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। सीते बहन चौबे प्लान मानियों में 44 साल की 44 years old श्री राजेश गिधारी जो आलू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं कीर्थियाज सुबह दस बजे इनके मकान सीते बहन चौबे प्लान मानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। कौशलो समय गोनिये में 79 साल के 79 years old श्री राजाना नाराया जो धर्मानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है कीर्थियाज दिन के दो बजे इनकी पत्नी श्रीमती ममिता नाराया के मकान कौशलो शमेगोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दे गाले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रुद्बाशेरी मुकामें 69 साल के 69 years old श्री सूरजलाल सोनिया जो विजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है कीर्थियाज सुबह दस बजे इनकी पत्नी श्रीमती अमरावादी सोनिया के मकान रुद्बाशेरी मौका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। लाक्वाजे शेबेल पेचित रिवियमी 77 साल की 77 years old श्रीमती कमला देवी बीपन जो कमला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है कीर्थियाज दिन के आज सुबह पौने दस बजे इनके बेटे श्री आनंदत रामा के मकान लाक्वाजे शेबेल पेचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:45 PM। Saint-Marie-Galie-le-Cornu
Sainte-Croix-Mie, Saint-Marie-le-Connu, Gully, Sainte-Croix.

0: में 87 साल की 87 years old श्रीमती चंद्रावती गोपाल, श्रीमती चंद्रावती गोपाल जो सीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान सेमारिलोकोनी रोड सेंट क्रॉस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूमि ले वाले पद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM जकारोंडा स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड श्रीमती वीना राजेश्री मुतुवीरन पैदाशी नाम बोला, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे के मकान जकारोंडा स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सेंट पियर बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM एवेन्यू कोर दे गॉल स्टैनली रोजिल में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड श्री वकील जगन्नाथ जो कुकू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी पत्नी श्रीमती स्वस्ति जगन्नाथ के मकान अवेन्यू को दे गॉड स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौन लेव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टरनून। नंबर 6 एवेन्यू लो के बोबा सेमी 44 साल की 44 ईयर्स ओल्ड श्री राजीव बंधुआ जो राजीव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे इनके मकान नंबर 6 एवेन्यू लोक के बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौन लेव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM लॉट नंबर 9 मोंसेलमो माउंट पॉम्पलेमूसेज में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री ब्रह्मानंदा मंगापाती जो नंदा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी रविवार 12 जुलाई को दिन के 10 बजे इनके मकान मोंसेलमो माउंट पॉम्पलेमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो वुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 800 and 19 kilohertz. This is Radio Mauritius. Sports News.
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंग्लैंड के लिए शर्मनाक हार, वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमिलिएशंस इन इंग्लैंड हिस्ट्री। ऐसा नहीं हुआ, होते होते नहीं हुआ, क्योंकि मसीहा हैरी केन ने दो गोल स्कोर करके इंग्लैंड को बेइज्जत होने से बचाया। कैप्टेन, इंस्पिरेशन और अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैरी केन ने इंग्लैंड की लाज बचाई। कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बहादुर जाबाज टीम 1-0 से आगे थी। सेकंड हाफ में 15 मिनट बाकी थे, तब हैरी केन के पावरफुल हेडर पर मैच ड्रॉ गया 1-1। मैच को समाप्त होने से 4 मिनट पहले फिर से हैरी केन का गोल, इंग्लैंड 2 कोंगो रिपब्लिक 1। ही डिड व्हाट द ग्रेट टू, ऐसा बीबीसी स्पोर्ट्स ने कहा। पर दाद देनी होगी कोंगो की जाबाज बहादुर टीम को, पहली बार वर्ल्ड कप में यहां तक आए और इंग्लैंड जैसी टीम को हराने के बहुत करीब थे। जो भी हो, हैरी केन का डबल, इंग्लैंड का अगला मैच मेक्सिको के खिलाफ होगा, इंग्लैंड की जीत। बेल्जियम की टीम भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुई। द रेड डेविल्स सेनेगल को 3-2 से हरा पाए। फर्स्ट हाफ में सेनेगल 1-0 से आगे, सेकंड हाफ में 2-0 से आगे सेनेगल, लुकाकू का गोल और चेलेमेंस ने अंतिम मिनट में मैच ड्रॉ किया 2-2, और एक्स्ट्रा टाइम में जाकर बेल्जियम को जितवाया चेलेमेंस ने। सेनेगल 2-0 से आगे फिर भी हार हुई बेल्जियम लास्ट 16 में, और यूएसए की टीम भी लास्ट 16 में पहुंची बोस्निया को 2-0 से हरा के। कनाडा, मेक्सिको और अब यूएसए तीनों मेजबान टीमें वर्ल्ड कप के लास्ट 16 में। अब सोमवार 6 जुलाई को मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड सुबह 4 बजे, फिर मंगलवार 7 जुलाई को यूएसए वर्सेस बेल्जियम लास्ट 16 में। आज के मैच रात के 11 बजे स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, फिर कल सुबह 3 बजे पोर्टुगल वर्सेस क्रोएशिया, और रात को ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इजिप्ट अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्दे। ट्रांसफर न्यूज, टोटनहम हॉटस्पर के लिए ट्रांसफर रिकॉर्ड 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर टोनाली स्पर्स में आने वाला है। न्यूकासल यूनाइटेड के साथ 100 मिलियन पर डील पर मंजूरी हो गई है। टेनिस, विंबलडन ओपन में कल यानिक सिना ने बहुत संघर्ष करते हुए बोगस को 7-6, 7-6, 6-4 से हराया, फिर अंद्रीवा को हराया ट्रेचकीवा ने। जोकोविच की जीत हुई, सित्सिपास को उसने हराया। सबालेंका, कोकोगोफ, अलियासी में ओसाका, कोबोली, मेदवेदेव, पेगुला, पोल, मुचोवा, फोनसेका आदि की जीत।

क्रिकेट की बात करें, इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच पहला मैच बारिश के कारण बीच में ही रोका गया। भारतीय टीम 189 रन बना पाई और इसमें संजू सैमसन एक रन पर आउट हुआ, ईशांत किशन जीरो, हाफ सेंचुरीज अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर की ओर से रहे। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलती चलती प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, इंग्लैंड बेल्जियम और यूएसए की टीमें लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई हुई। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

नु थवाई नु लावेनियत हर खातिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल जात बा। सेक्टर एग्रीकल्चर रवीन नितीश ओजाहिब कंपनी लिमिटेड जिन बिले अखिविया सेश में खोजा थवंजा 50 गुमेल एग्रीकल्चरल लेबर एप्लीकेशन खातिन फोन करिया सैक सित सित दुवित निफसिस सैक पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2026। सेक्टर लैंडस्केप एंड मेंटेनेंस लोगों स्टीव एंटरप्राइज लिमिटेड जुन रिजर्वॉयर रोड गुडलैंड्स में है खोजत वंजा 8 गो गार्डनर जिसे पे उन्हें पहड़ लेबा और एक बरिस के एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन का थीन फोन करिया 58 23 41 92 पर। अर्जी भेजे के आखिरी तारीख है 18 जुलाई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग तंजी स्वीट्स लिमिटेड जुन रॉयल रोड लालमाठी में है खोजत वंजा 5 गो मेल फूड प्रोसेसिंग ऑपरेटर जिनका एक बरिस के एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशन खातिन फोन करिया 52 50 33 69 पर। अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 23 जुलाई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग मुटा इंजीनियरिंग लिमिटेड जुन कॉन्फुखो कास्तिल में है खोजता आक वाल्टर जिनका 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। टिग एंड मिग वाल्टर जिनका 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा। मशीन ऑपरेटर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस है। स्टोक कीपर जिनका 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। सेल्समैन जिनका 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। ड्राइवर जिनका 5 बरिस के एक्सपीरियंस है और ड्रॉट्समैन जिनका 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशन का तरह सीवी विदा करिया बाई मेल info@mutain.mu पर। अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड गौरी मार्केटिंग लिमिटेड जन लासूस सेंट्रल प्लाक में है खोजता 2 गो स्टोर अटेंडेंट या हेल्पर जिससे पेली पहड़ लेबा। एगो फीमेल सेल्स पर्सन जे फोम काटले पहड़ लेबा। साथ में चाहला 2 गो मेल पैकिंग ऑपरेटर और इनकरा चाहना 2 बरिस के एक्सपीरियंस रहे के। एप्लीकेशन खातिन फोन करिया 52 51 62 22 पर या तो फिर आप सकबर जाए गौरी मार्केटिंग लिमिटेड लासूस सेंट्रल फ्लैग। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2026। पब्लिक सेक्टर में जो न तोहर खातिन काम रखल गल बा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजा था EEG टेक्नीशियन और एक काम खातिन तोहरा चाहला जाके ई वेबसाइट चिके करे के https://psc.gov.mu.org/ और अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 29 जून 2026। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजता बायोमेडिकल इंजीनियर या सीनियर बायोमेडिकल हेल्थ इंजीनियर आपकी भी चाहला ई वेबसाइट पे जाए के। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 30 जून 2026। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खोजता मैनेजर XBRL और https://psc.gov.mu.org/ पर जाके आप लोग सक बजा अपन एप्लीकेशन विदा करे। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 जून और हुए पे पुलिस डिपार्टमेंट खोजता केटरिंग सुपरवाइजर और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 6 जुलाई 2026। रोड्रिग्स रीजनल असेंबली हेल्थ खोजता केटरिंग सुपरवाइजर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2026। तो याद रखे वेबसाइट पे जरूर जाइए। प्राइवेट हाउस होल्ड वैकेंसी केयर खातिन रेजियों जोन बा फ्लोरियाल एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए EIC वाक्वा 6964031 यानी कि 69 64 03 N या 69 76 45 8 पर। तो ई रहल तोहर खातिन नू थवाई नू लावेनिया जोन तोहर खातिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: चलिए श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। सबसे पहले रॉजिल के रहने वाले निवासों को, जिनमें है एनएच डीसी कॉलेवियर, अवेन्यू मद्रास, सेंट ओजिल, मार्सलमान सिबर्न, अवेन्यू रासिन टाटन, अवेन्यू सीरियस और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 2 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे और शाम के 5:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ में है फ्लक के रहने वाले निवासों को, जिनमें है बुले ब्लॉ, प्लेन डे जैसिनी, अवेन्यू फ्रांसवा मिटेरान, फ्लक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फ्लक पुलिस स्टेशन और सिरोली रोड के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 2 जुलाई 2026 को दिन के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।

श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। गुरुवार का दिन है आज, 2 जुलाई 2026। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं श्रोताओं इस हिंदुस्तानी सभा में। वैसे सुबह की सुनहरी किरणें दस्तक दे चुकी है और एक नया दिन आपका इंतज़ार कर रहा है। अच्छे विचारों के साथ अपना दिन को ज़रूर संवारिए और हमारा साथ देती रहे। यह है सुबह का नजाना कार्यक्रम। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं चिंतन के साथ, चिंतन डॉक्टर जमैन जी की प्रस्तुति में।

0: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: जिस मनुष्य के हाथ में क्षमा का शास्त्र बंधा हुआ है, सब सिद्धियां उसके घर में बनी रहती हैं। उसको कभी किसी से भय नहीं होता है। वह सदैव निर्भय होकर शांति और सुख के साथ सोता है।

0: तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चलिए हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, आपके लिए चंद पुराने गाने। 8 बजे भोजपुरी समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद चंद द्वैत्स गाने आपके नाम। हमारी धरोहर 8:50 पर किरण जानकी की प्रस्तुति में, 7 में भोजपुरी गीत आपके लिए। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ। 10 बजे आप एक बार फिर से समाचार सुन सकेंगे और इसके बाद भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। 11 बजे फिर से समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद होने वाला है उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में। तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरिशानिनी के साथ दिन के 12 बजे, सॉरी 12 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी के साथ प्रीति लेकर आएगी। मराठी भाषा में कार्यक्रम 1:30 बजे, दोपहर के 2 बजे मंडारीन प्रोग्राम जिन के साथ। अमिता लेकर आएगी रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में 2:30 बजे, 2:45 पर आपकी पसंद कार्यक्रम मेरी प्रस्तुति में। और इसके बाद आप सपहर के 3 बजे समाचार सुनेंगे और इसके बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे भक्ति सागर कार्यक्रम सुमिता की प्रस्तुति में और इस कार्यक्रम के जरिए आप सुन सकेंगे पीयूष धारा कार्यक्रम। और पीयूष धारा कार्यक्रम डॉक्टर महावीर शांति जी की प्रस्तुति में। शाम के 5 बजे सदाबहार गाने सुमिता के साथ। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे और इसके बाद चंद फिल्में गाने। 6:30 बजे दाविद के साथ मंदारिन में कार्यक्रम, तमिल भाषा में कार्यक्रम युवरासन के साथ। 7 बजे, 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा के साथ। मराठी भाषा में कार्यक्रम शिरीष की प्रस्तुति में 7:50 पर। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, ये कार्यक्रम देवीना की प्रस्तुति में महफिल शब समीर के साथ रात्रि के 8:40 पर। और इसके बाद भोजपुरी तड़का, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी किरण रात्रि के 11 बजे सुनहरे पल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद पुराने गाने गिनिशा के साथ और रात्रि के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके चंद प्यारे प्यारे गीत।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियाँ,
2: झलकियाँ,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, आपके नाम हमसे जा रही है रेडियो मॉरिशस पे। वैसे आपका दिन मधुर सुरों और ढेर सारे खुशियों से भरा रहे। जैसे पुराने गाने की धुनें आपको सुकून देती है, वैसे ही हर नई सुबह जीवन में नई उम्मीद जगाती है। तो चलिए पुराने गीतों का ये सुहाना सौर, जी हाँ, पुराने गीतों का ये सुहाना दौर, इसे हम जारी रखेंगे आपके लिए। अगली भेंट में मोहम्मद रफी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत, इसे आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाइए हमारे साथ।

ये अनजान राहें, ये ठंडी हवा और दिल की ये बेचैनी कुछ रिश्ते रास्तों से नहीं, साथ से बनती है। और जब साथ सच्चा हो तो हर सफर खूबसूरत लगने लगता है, है ना। खूबसूरत गीतों का ये कारवा हम जारी रख रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। 7:32 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, सुबह का नजाना कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे।

चलिए श्रोताओ, चंद प्यारे प्यारे गीत आपके नाम जो है बुलंद है इस कार्यक्रम में। ये मौसम और दिल की ये धड़कन सब जैसे एक ही नाम दोहरा रही है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं, और जब एहसास सच्चे हो तो मोहब्बत हर दिन

श्रोताओ, दिल से बस इतना कहना है, आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार को हमेशा दिल में जगह देते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। याद रखिए कि हर सुबह एक नई कहानी लिखने का अवसर ज़रूर लेकर आती है।

वैसे श्रोताओ, पुराने गीतों की मधुर धुने की तरह हर सुबह भी मन को सुकून देने वाला होता है। बस यही संदेश लेकर आता है, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल जरूर अपने लिए निकालिए।

0: प्यार वो एहसास है जो बिना आवाज के भी दिल तक पहुंच जाता है। किसी भी मुस्कान अगर आपकी सुबह को बना दे, किसी की याद अगर रातों रात को जगा दे, तो समझ लीजिए दिल ने अपना ठिकाना चुन लिया। प्यार की यही सबसे खूबसूरत बात है, ये हर दिन को खास बना देता है। तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं सुबह का नज़ाना कार्यक्रम।
1: दिल की बहार, सुबह का नज़राना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन खड़ी मिला ले जा फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेश बा भोजपुरी के समाचार। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य के एगो बहुत बड़का समस्या बनल बाटे। एकरा ध्यान में रख के सरकार जनता के जस्ती अच्छा सुविधा देवे खातिर ठोस प्रयास करता। इस दिशा में देखभाल सेवा बेहतर करे खातिर देश में कई इलाका में विशेष केंद्र स्थापित करल जाता। जीतू अस्पताल, फ्लाक के साज अस्पताल और पॉम प्रोविंसेस के एसएसआईएन अस्पताल के बाद थ्रियोली और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक और अब न्यूगोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एगो छठा डायबिटीज़ एंड वास्कुलर सेंटर खोलल जाल। मकसद है जनता के बेहतर इलाज प्रदान करे के। गलत थोड़ा बखत से इनोट करल गल है कि सेंट जॉन नाइट शेल्टर में अब सब ले जस्ती 19 से 45 बरिस की उम्र के आदमी लोग रहत हुन जा। बेघर होए के समस्या पहले जस्ती बर्जन लोग से जुड़ल माना जात रहल, बकिर अब ई सामाजिक समस्या कमती उम्र के लोग के बीच भी देखल जाता। अधिकारी लोग के अनुसार ये गो चिंताजनक प्रवृत्ति है जो मॉरिशस में कठिन हालात में रहे के तेजी से बदलल स्थिति दर्शावेला। ई वास्तविकता के बीच सहायता देवे होला संस्था लोग पर ही दबाव बढ़ाता। उ लोग के लगातार बढ़ल मांग और मदद के जस्ती जटिल आवश्यकता से निपटे के पड़ता। मंगल के राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल बिना सुधार के पारित करल गल, जेकर से बजट 2026-2027 मंजूर कर लेवल गल। इस बजट में खाद्य सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता में से एगो है। 25x35 फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार आव 2035 ले देश के खाद्य आवश्यकता के 25% हिस्सा स्थानीय स्तर पर ही पैदा करे के और आयात पर ही निर्भरता कमती करे के लक्ष्य तय कर ले बाटे। फागे के CEO माधवी माधु के अनुसार ई एगो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उनका यही मानना है कि मॉरिशस सभी अपन इस्तेमाल के 70% ले जस्ती खाद्य सामान आयात करेला तथा बीज खाद और फिटोसैनिटरी उत्पाद खातिर भी काफ़ी जस्ती विदेशी स्रोत पर ही निर्भरता बाटे। उनका अनुसार ई लक्ष्य की पूर्ति खातिर जस्ती अनुसंधान, नवाचार, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन तथा खेती खातिर जमीन सुलभ करे की आवश्यकता पड़ी। सरकार देश के बायोसिक्योरिटी खातिर संभावित खतरा के लेके सख्त रुख अपनावता। कृषि उद्योग मंत्रालय देने से काल पहला जुलाई के जारी करल गल एगो कम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से जानवर के लेके निकलल जहाज अपेक्स

0: एसएस सक्सेस कथित तौर पर ही अपन तय रास्ता से भटकल बाटे और वो मॉरिशस की समुद्री क्षेत्र में ढूके के कोशिश करता। मॉरिशस पोस्ट अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम लोग के तैनात करल गल है बात के ध्यान रखे खातिर कि जहाज से कोनो भी तरह से अवैध तरीके से कोनो भी माल या फिर जनावल के ने उतारल जाए। और आज 2 जुलाई से वाकवा के जन के निधि एवेन्यू पर स्थित तकामा का पुल नवा सिरे से खुल गल बाटे। ये बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश कालक्योपिप में लिकाजेन पुल के दूसरका चरण के उद्घाटन के दौरान करलन। ये पुल के निर्माण 2 चरण में करल गल है जेकर खातिर 5 मिलियन रुपया के निवेश करल गल है। कई बरिस ले इलाका के बाशिंदा लोग ई कमती चौड़ा पुल के कारण कठिनाई के सामना करत रहलन जा हुआ कई गो हादसा भी पेश आयल बाटे। और दूसरा देश के खबर में एक हफ्ता हो गल बा जब से वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आयल बा। मरे हुआ लोग की संख्या 2300 पार कर गल है जहाँ पर ही मलबा हटावे के काम जारी बाटे तो हुआ से जिंदा लोग के निकाले की संभावना भी कमती होल जाता। आज हुआ के लोग खाद्य सामान और दवाई की कमी के नवा संकट झेलत हो अंजा। तय रहल भोजपुरी के समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मरनी के खबर सुना जा। बोनिया रोथ्रियोलेमी, बोनिया रोथ्रियोलेमी 56 साल के, 56 इयर्स ओल्ड के जनाब मुमताज़ बोला, जनाब मुमताज़ बोला जो मुमताज़ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके मकान बोनिया रोथ्रियोले से उठा के दफना खातिर प्रंदी पापा के कब्रस्तान ले जाल जाए। Chemin Gabriel Fropier, Forêtside, mais Chemin Gabriel Fropier, Forêtside, mais 87 Boris K, 87 ans K, Janab Kalimji Gouman, Janab Kalimji Gouman, Jo Bai Kalam Nam Se, Justi Jal Jatralan, Unkar Intakal Hogar Bati, Unkar Janaza Aj Dinke, 11 बजे उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर घर शुमे गैब्रियल फ्रोपिये फौज साइड से उठा के दफनाए खातिर बिगा के कब्रस्तान ले जाल जाए। नंबर 15 कोसों स्ट्रीट विल में कौचे मिलिटिया में 52 बरिस के 52 ans के श्री शशि कुमार भावनी ज्योति, श्री शशि कुमार बावनी ज्योति जे शशि नाम से जस्ती जान जातरलन गुजर गल हवन उनकर माठी आज दिन के 1 बजे उनकर माठी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा श्री सावन भावन ज्योति के मकान नंबर 15 कोसों स्ट्रीट विल में कौचे मिली तैसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर से कोसों सैंपिया के शमशान भूमि ले जाल जाए। रलरो देखवाइयों में 82 बरिस के 82 ans के श्रीमती मुनेश्री रामबरन, श्रीमती मुनेश्री रामबरन जे तारा नाम से जस्ती जान जाते रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे आधा उनकर माटी आज दिन के 2 बजे आधा उनकर घर रॉयल रोड इकवाइयों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। एवेन्यू रोजिए नंबर 2 मोंसेलमों गाफ्रे लियोशेते रोजमी 57 बरिस के 57 ans के जनाब अहमद कलील जुनाब, जनाब अहमद कलील जनाब जे कलील नाम से जस्ती जान जाते रहन उनका इंतकाल हो गल बा। उनका जनाजा आज दिन की 12:15 बजे उनका घर एवेन्यू गोजिए नंबर 2 मोसेल मगाफिल होशियारपुर से उठा के दफना खातिर व मौशों के कब्रस्तान ले जाल जाए। क्लेफो नंबर 3 वाकुआ में 80 बरिस की कतवेंजों के श्रीमती गजरानी जगमोहन, श्रीमती गजरानी जगमोहन पिताशी नाम रामजदा गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1:15 बजे उनका

माँ टी आज दिन की सवा एक बजे उनका हृदय माद श्री किशोर ताकुरी के घरे क्लेफो नंबर 3 वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुलफेनियों की शमशान भूमि ले जा जाए। भजन लेन लाल माटी में 39 बरिस के 39 के श्री युधीश लीलाधर, श्री युधीश लीलाधर जी सुदेश नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पिता श्री गुरुलाल लीलाधर के घरे भजन लेन लाल माटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी रोड लाल माटी के शमशान भूमि ले जाल जाए। ईस्ट लेन कौदस का थोबोन में 65 बरिस के 67 के श्रीमती ईश्वरी लक्ष्मण, श्रीमती ईश्वरी लक्ष्मण पैदाशी नाम गुड़ वो गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर बेटा श्री मनीष लक्ष्मण के घरे ईस्ट लेन कौदस का थोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाल जाए। कोस्टल रोड पॉइंटो कानोनिये में 79 बरिस के 79 के श्रीमती गोमती पाइदियामा, श्रीमती गोमती पाइदियामा पैदाशी नाम रामचरण जी शांति नाम से जस्ते जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा श्री संजय पाइदियामा के घर एक होस्टल रोड पॉइंटो कानूनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तेमिनी स्थगियों के शमशान भूमि ले जाल जाए। शोमैलापोंप कारोलिन में 74 बरिस के 67 के श्रीमती महेंद्री गर्बरन, श्रीमती महेंद्री गर्बरन पिताशी नाम चंदू जे महेंद्री नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा श्री सूरज गर्बरन के घरे शोमैलापोंप कारोलिन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जाल जाए। सीतेबरन चौबे प्लान मानियों में 44 बरिस के कान का थौके श्री राजेश गिरधारी जी आलो नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज फजर के 10 बजे उनकर माटी आज फजर के 10 बजे उनकर घर ही सीतेबरन चौबे प्लान मानियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुई के शमशान भूमि ले जाल जाए। कौशौलो शमैगोनी में 79 बरिस के 79 श्री राजाना नाराया, श्री राजाना नाराया जे धर्मानंद नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पत्नी श्रीमती ममिता नाराया के घरे कौशलोश मैगोनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ही वेदिगाली के शमशान भूमि ले जाल जाए। खुद वाशेरी मुकामी 69 बरिस के 69 के श्री सूरजलाल सोनिया, श्री सूरजलाल सोनिया जे विजय नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर पत्नी श्रीमती अमरावादी सोनिया के घरे उद बाशेरी मौका से उठा के अंतिम संस्कार खातिर से कुन सौंपिया के शमशान भूमि ले जाल जाए। लाखवाजे शेबेल पेजी त्रिविया में 77 बरिस के 77 के श्रीमती कमला देवी बीपन, श्रीमती कमला देवी बीपन जे कमला नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 9:45 बजे उनकर माटी आज के 9:45 बजे उनकर बेटा श्री आनंद दत्त रामा के घरे लखवाजे शिबेल पिछली त्रिविया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शिबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। सेंट मारी ले कोनू गली सेंट क्वामी, सेंट मारी ले कोनू गली सेंट क्वामी 87 बरिस के 87 के श्रीमती चंद्रावती गोपाल, श्रीमती चंद्रावती गोपाल जी सीता नाम से जैसे जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरे सेंट मारी ले कोनू सेंट क्वा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भोईले वाले देपैत के शमशान भूमि ले जाल जाए। जकारोंदा स्ट्रीट ग्रांड रिवियनो वेस्ट में 57 बरिस के 57 के श्रीमती वीना राजेश्री मुतुवीरेन, श्रीमती वीना राजेश्री मुतुवीरेन पैदाशी नाम भोला गुजर गल हवन उनकर माटी आज फजर के 10 बजे उनकर माटी आज फजर के 10 बजे उनकर घरे जकारोंदा स्ट्रीट ग्रांड रिवियनो वेस्ट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोटा सैफिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाल जाए। अवेन्यू कोडेगॉल स्टैनले रोजिल में 65 बरिस के 65 के श्री वकील जगोनत, श्री वकील जगोनत जे कुकू नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर

0: माथि आज दिन के 12 बजे उनकर पत्नी श्रीमती स्वस्ती जगन्नाथ के घरे अवेन्यू कोदेगौ स्थानीय रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौंदेवीय के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 6 अवेन्यू लोके बोबा सैमी, अवेन्यू लोके बोबा सैमी 44 बरिस के कारण का थौके श्री राजीव बंधुआ, श्री राजीव बंधुआ जे राजीव नाम से जस्सी जान जाता रहलन ओ गुजर गल हवन। उनकर माती आज फजर की 9 बजे उनकर माती आज फजर की 9 बजे उनकर घर अवेन्यू लोके बोबा सैन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौन लिव्यू के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर लोत नंबर 9 मोसेल माउंट पॉम्प्लोमोसिस में 80 बरिस की काथवें झोंके श्री ब्रह्मानंदा मंगापति, श्री ब्रह्मानंदा मंगापति जे नंदा नाम से जस्ते जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी रविवार 12 जुलाई के दिन के 10 बजे उनकर माटी रविवार 12 जुलाई के दिन के 10 बजे उनकर घरे लॉट नंबर 9 मोसलमा माउंट पॉम्पलोमोसे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबल सब परिवारों के संगे हमी की संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आठ बजकर 21 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। सभी श्रोताओं को फिर से हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में। सुबह का नजाना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आप के लिए चंद डुएट्स गाने लेकर आए हैं। तो चलिए पहले डुएट की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म बहुत ही पॉपुलर है, फिल्म का नाम है प्रेम नगर और इस फिल्म से लिया गया ये डुएट जो है किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

1974 की मूवी प्रेम नगर, 70s का ये वाइब, बारिश, ठंडी हवा और साथ में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की जोड़ी, इसलिए ये गाना आज भी लोगों को बहुत ही याद आता है। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गाना अभी आप सुन रहे थे। गीतों का ये खूबसूरत कार्रवाई से हम आगे बढ़ाएंगे अगले गाने की ओर। फिल्म का नाम है बदरते रिश्ते। इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

लिए श्रोताओ बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम बदलते रिश्ते, इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे और बहुत ही लोकप्रिय गीत अभी आपने सुना। आज भी लोग बहुत ही प्यार के साथ गुनगुनाते हैं और गाने में प्यार है, अपनापन है, सब कुछ इस गाने में आप देख सकते हैं।

सकते हैं और रिश्तों के महत्व के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बखान किया गया है। तो चलिए, 8:35 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। ये अगला गीत जो है फिल्म सीमा से लिया गया। ये सरबहार गीत जो है किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, वक्त का इंतज़ार मत कीजिए, खुद वक्त बनो। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, पर आने वाला वक्त हमारे हाथ में है, तो समय का सदुपयोग हर किसी को करना चाहिए।

अजी वाह, गाने कितना जो है बहुत ही प्यार के साथ आप सुन रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, चंद प्यारे प्यारे गीत बुलंद है आपके नाम।

चलिए श्रोताओं, 1970s के दौर के गाने आप बेहद ही एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए एक अंतिम नजाना आपके लिए, अंतिम डुएट कुनाल गांजावाला और प्रियानी वानी की मीठी आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

0: चलिए श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं चंद्रेश गण। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। ब्रिटानिया और विलाज डे रिशबुआ के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 2 जुलाई 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर, हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज ई कार्यक्रम में 1850 से मॉरिशस द्वारा स्थापित क्वारंटीन स्टेशन पर और मॉरिशस के कॉलोनी में खेती और यहाँ पर जोन ताबिस्मा रहल ओकर में जोन अलग अलग अहदा रहल जिके ये गौशी बोली लाजा काम करे के अलग अलग दर्जा ऊपर बतियापसा। अब सोचा 1850 में मॉरिशस में क्वारंटीन स्टेशन के प्रथा रहल। आज के ज़माना में हम ई क्वारंटीन सुनी लाजा और सोची ला सा कि ई एगो नवा प्रणाली है जहाँ पर आप एगो एपिडेमी, एगो महामारी या फिर एगो वायरस से बचे खातिर एक जना के क्वारंटीन में डाल देबा। लेकिन ई तब के समय में जे महामारी एगो कॉलोनी में चलाए तो देश के आधा आबादी मर जात रहल और ई खातिर मॉरिशस के उत्तर में फ्लैट आइलैंड, लील प्लैट और इलो गाब्रियल में उस सब कोई के भेजल जात रहल जे लोग जहाज में मॉरिशस उतरे आवत रहलन सा। लेकिन उ लोग के जहाज में महामारी फैल जात रहल तो उ लोग के मॉरिशस उतरे से आगे फ्लैट आइलैंड और इलो गाब्रियल भेजल जात रहल क्वारंटीन पर। उस समय में जब हम ये बात करत है जा तो धरल 1700-1800 के बात करत है जा जहाँ पर गुलाम के भी चर्चा हुआ था, जहाँ पर शर्तबंद मजदूर के भी चर्चा हुआ था। कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया और जिसौथी महामारी बहुत तेज़ी से फैलत रहल और ये सब से जानलेवा रहल। ये सब बीमारी मॉरिशस के अंदर रहे होला लोग में भी हो जात रहल और तब लोकल ट्रांसमिशन पर काबू पाए खातिर पैतो कानूनी में एगो क्वारंटीन स्टेशन के प्रबंध कर रहा 1856 में। अभी बात करते ही जा शर्तबंद मजदूरी इंडेंचर सिस्टम के जो

0: पीरियड रहल जोन समय रहल ओकर पर हुआ पर तो कानूनी में एगो फोर्ट रहल जोन फ्रेंच लोग 1772 में बनैले रहन सा और एके क्वारंटीन स्टेशन में बदल देवल गए। अब खेती बाड़ी के बाद मॉरिशस में खेती यानी कान 130 से 600 एकड़ के बीच के ज़मीन पर करल जात रहल। छोटा खेती छोटा किसान यानी छोटा प्लांटिया पिची प्लांटिया जी के बोली लासा उ लोग ये सब काम करत रहलन सा और ये लोग वर्किंग क्लास से रहलन सा मजदूर वर्ग रहलन सा जेकर परिवार व्यापार में रहल। छोटा प्लांटिया खाली कान के खेती करत रहल जबकि बड़ा प्लांटिया उ कान के खेती करी चीनी के पैदावार भी करी और इस सब ताबिस्मों के संचालन ज़्यादातर ओकर मालिक लोग ही करी और उ लोग के सहायता करत रहलन सा और उ लोग के नीचे अब रही एगो मैनेजर जेके शेफ द फ्लाये बोलल जात रहल। एगो ताबिस्मों में देखबा तब 50 से 500 तक काम करवा सके काम करे और ताबिस्मों के जोन सबसे ऊपरे के अहदा रहल उ रहल मालिक हर एगो कॉन्सुक्रिये के मालिक। ओकर नीचे एगो मैनेजर रही और एगो अकाउंटेंट मैनेजर यानी शेफ द एम्प्लॉये उ ताबिस्मों के चलावे के काम संभारे वो अपन असिस्टों और मजदूर लोग के काम पर ध्यान देवे और अलग अलग घर और ढाका में रहे होला लोग में काम के बांटे पर ध्यान देवे। अकाउंटेंट सब काम के जो डिलीवरीज करे के बाद लिवरेजों ओकर अंसाज रहल उ लाकुब के दिन स्टोर और चीनी के गोदाम के संचालन करी। जब मजदूर लोग पर जुर्म खातिर मुकदमा चले तो उ माजिस्ट्रा के सामने प्रस्तुत हुए। मैनेजर के नीचे एगो मौका काम करे जे रोज अटेंडेंस ले और देखे कि काम करल जाता अच्छा से कि नहीं और के आलबा काम करे के नहीं आलबा काम करे। मौका के नीचे रहल सुपरवाइजर उ रोज फजर के अटेंडेंस के हिसाब से काम बांटे और खेत ढाका और अस्पताल के बीच संपर्क रखे खासकर बीमार लोग के इलाज खातिर उ लोग के अपन जो ताबिस्मा बा हुआ से सकी एगो दूसर अस्पताल भेजे या फिर डिस्पेंसरी में। अब ओकर नीचे रहल एक बगल मूला में काम करे होला और चीजों लोग और दूसर बगल रहल सियादा जे ढाका और ताबिस्मों के खेत के बीच संपर्क रखे उ खेत में काम करे होला सब मजदूर के औसौज रहल। ओकर नीचे काम करे खौन बौन गौबान जे के बोलीला सा और ई लोग खेत में कूपे सौजे प्योसे करे जैसन भारी भरकम काम करियन जा और पिछित बौन चिबान जे के बोलीला सा उ लोग थोड़ा कमजोर रहे ई खातिर उ लोग के उ सब काम देवत रहल जहाँ पर ई लोग के चाहिए कोई के सहायता करे के। अब एकर नीचे रहल छोकरा जे लोग नवा प्लांटल कान के सुरक्षा करियन सा मुर्गी और चिड़ई से और फिर रहल औरत और छोकरी लोग के टोली ई लोग के हल्का फुल्का काम देवल जात रहल। तो ई रहल एगो ताबिस्मों में जोन अलग अलग अहदा रहल ओकर पर आज के कार्यक्रम और जोन बुजुर्ग लोग ताबिस्मों में काम कर ले हवजा आप लोग अपन जमाना अपन समय के एक बार फिर जिले हुई बजा काल फिर मिलब जा कार्यक्रम के ध्यान से सुनला धन्यवाद नमस्ते।
1: चलिए श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में। तो चलिए कुछ घड़ी में 9 बजने वाले हैं आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे और समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। तो मिलेंगे वापस 10 बजे भक्तिधारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: अब आप अदिति से समाचार सुनेंगे। नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार अनुराधा। श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लाक के साज अस्पताल और पॉम्पलोमोसिस के एसएसआईएन अस्पताल तथा थ्रियोले और फ्लोरियाल के मेडिक्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यू गोव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वैस्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। सरकार देश की बायो सिक्योरिटी के लिए संभावित खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय की तरफ से कल 1 जुलाई को जारी कम्युनिके के मुताबिक मोजाम्बिक से पशुओं को लेकर निकला जहाज अपेक्स एलएसएस सक्सेस कथित तौर पर अपने तय रास्ते से भटक गया है और वो मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर सकता है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी और नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं ताकि इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस जहाज से अवैध तरीके से कोई भी माल या पशु उतारा न जाए। अगले 6 से 9 दिसंबर के बीच पाई के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट लगेगा। ये गतिविधि 1 जुलाई महीने के आखिर के लिए निर्धारित थी, लेकिन केंद्रीय अफ्रीका में इबोला महामारी के फैलाव की वजह से इसे स्थगित किया गया है। इसका आयोजन मॉरिशस सरकार और कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की मिली जुली पहल पर किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी नेता, अमेरिकी और अफ्रीकी उच्चाधिकारी, वरिष्ठ व्यापारी, निवेशक और फाइनेंसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मकसद है व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी मजबूत करना। इस गतिविधि के लिए 2500 से ज़्यादा डेलीगेट्स मॉरिशस आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों में आग लगने की खबरें हैं। रशिया यूक्रेन संघर्ष के 4 साल हो गए हैं और कई शांति वार्ता कोशिशों के बावजूद संघर्ष थमने के आसार नहीं दिख रहे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज दीजिए नमस्कार।
2: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

आप सभी को नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सबों को तहे दिल से स्वागत हम करते हैं। और ये प्रोग्राम आप रेडियो मोशे से, मतलब सीधा ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये भी याद दिला देते हैं कि ये टेलीविज़न के तीसरे चैनल पर, यानी कि टीवी, मतलब आप देख सकते हैं ये लाइव प्रोग्राम टीवी थ्री पर। तो प्रिय दर्शकगण और प्रिय श्रोता, आज की चर्चा में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हुए हमारे आज के में साथ दे रहे हैं टेक्निक पर काद्या को दादीन, प्रोडक्शन सहायिका हैं दीपशिखा और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं रितेश महावीर। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जो वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ ऐसा एक विषय है जो है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास। तो जैसे आप सब जानते हैं, बदलता मौसम, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं, आज भर पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बन गया है। आप ज़रूर हमारे साथ ये बात ज़रूर मुझसे सहमत ज़रूर होंगे। तो ऐसे समय में ये समझना बेहद बेहद ज़रूरी है कि हम प्रकृति की रक्षा कैसे करें।

0: तो आज इसी विषय को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जिसे आप देख ही रहे हैं स्टूडियो में उपस्थित है एक सम्मानित अतिथि श्री हेमंत राम गोविंद जी, जो भूगोल के प्राध्यापक होने के साथ साथ मॉरिशस विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर हैं। तो श्री हेमंत जी नमस्कार और स्वागत है आज की चर्चा प्रोग्राम में।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार,
0: धन्यवाद। जैसे कि हमने कहा कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, हम क्लाइमेट चेंज, इस सब पर पर्यावरण से संबंधित चर्चा करेंगे। आप एक ज्योग्राफर हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, ये क्या है आपके देखने में?
1: क्लाइमेट चेंज समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट मतलब, कैसे हम कह रहे हैं कि मॉरिशस में क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, गर्मी का समय आता है, थोड़ा अभी ठंड पड़ रहा है तो बारिश, गर्मी में बारिश ज़्यादा होता है, ये ठंड समय में कम बारिश होता है, और मतलब कितना बारिश होता है एवरेज हर साल, कितने साल से वो लगभग बराबर था, लगभग मतलब एक यूनिफॉर्मिटी, एक कंटिन्यूटी था, जो जैसे क्लाइमेट हमारा था वैसे ही पहले था, मतलब 100 बरिस 200 बरिस 300 बरिस पहले, तो वो बदलता नहीं था। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है, ये कन्फर्म है कि क्लाइमेट बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस है, साइक्लोन में डिस्टर्बेंस है, टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस है, बारिश में डिस्टर्बेंस है। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी हमारा जो बारिश है बहुत कैसे बोलते हैं, बहुत डेफिसिट है, कम बारिश हुआ है महोबाक्वा में, मेरे ख्याल से लगभग 40% पानी है, और अभी कुछ हो सकता है कि ज़्यादा ठंड भी होगा। और नॉर्मली हर साल की तरह ये विंटर नहीं है मॉरिशस में, आप सहमत हो गए मेरे साथ कि विंटर में टिपिकल जो समय ये वेदर होता है वो मतलब विंडी रहता है, एंटीसाइक्लोन्स रहता है, छोटा छोटा बारिश।
0: तो क्या यही है ये चेंज, ये बदलाव इसी वजह से?
1: बदलाव अभी दो सप्ताह, एक 10 दिन पहले बहुत बड़ा बारिश हुआ था कौली मास में, वहाँ पानी एकदम, दिस इज मतलब ये नॉर्मल नहीं है। तो ये बदलाव हो गया है, जो नॉर्मल क्लाइमेट था, जो नॉर्मल ऑब्जर्वेबल फिनोमिना था, वो बदलाव हो गया है। कैसे बदलाव हो गया है, एक बहुत बड़ा कारण है जो कहते हैं।
0: अच्छा, तो इस के कारण पर आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये इसमें अंतर है, डिफरेंस है क्या है?
1: क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण।
0: अच्छा,
1: मतलब मैं स्पष्ट कर रहा हूँ उसको। देखो हमारे जो पृथ्वी है लगभग गोल है, और ऐसे हमें सोचना चाहिए कि उस पर एक कंबल है, जैसे मूलतों बहते हैं उसके ऊपर एक कंबल है, तो वो कंबल वो यहाँ धरती से एक 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर की ऊंचा तक ये कंबल है। जितना क्लाइमेट का फिनोमिना है, साइक्लोन, एंटीसाइक्लोन, मतलब हरिकेन, सब कुछ यहीं पर होता है, ये इस भाग में जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ जब गर्मी आता है सन से, सूर्य से, तो जब गर्मी आता है धरती पर, तो लगभग सब वापस चला जाता है, थोड़ा सा रहता है, वो थोड़ा सा गर्मी वो इसेंशियल है, मतलब जीव जंतु के लिए, अगर वो थोड़ा सा इसेंशियल, थोड़ा सा वो जो गर्मी नहीं होता तो जीव जंतु नहीं रहते इस धरती पर, लाइफ वुडंट हैव बीन पॉसिबल। तो उसको कहते हैं
0: है,
1: इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब सूर्य का वो जो किरण आते हैं हमारे धरती पर, वो गर्मी फैलाते हैं और लगभग सब वापस चला जाता है, लेकिन थोड़ा सा रह जाता है ताकि हमारे धरती पर सब कुछ जी सके।
0: ओके,
1: मतलब अब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इसका मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब वो जो कंबल है वो ज़्यादा जाड़ा हो

0: गया, बड़ा हो गया है। वो जब वो सूर्य से वो जो किरण आ रहा है वो जितना उसको वापस जाना चाहिए था एटमॉस्फेयर में वो जा नहीं रहा है,
1: बढ़ रहा है,
0: बढ़ रहा है, यहीं पर वो थम गया है।
1: ओके,
0: यहीं पर थम गया है वो। तो इसको कहते हैं वो जो थोड़ा सा चाहिए था हमेशा, उसको कहते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज इसेंशियल फॉर लाइफ। और ये जो एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये मनुष्य के कारण, मनुष्य के एक्टिविटी के कारण ये एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ज़्यादा वो जो गर्मी है वो थम गया है अपना, वो जो एटमॉस्फेयर है 0 or 10,000 मीटर्स।
1: मतलब आपका कहना कि कुछ हम लोगों यानी कि मानव जीवन के कुछ रेस्पॉन्सिबल है, उनकी जिम्मेदारी
0: 100% मानव रेस्पॉन्सिबल है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज है, अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन साइंस कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये जो अपना डोनाल्ड ट्रंप है प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट यूएसए, वो कह रहे थे कि ये दिस कॉन जॉब, ये झूठा है। अभी एक 6-7 महीना पहले वो कहा इंटरनेशनल न्यूज़ में कि ये झूठा, ये नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ है। कैसे हुआ है? देखो जितना कुछ अभी हम देख रहे हैं दुनिया में, बड़ा गाड़ी, बड़ा एयरप्लेन, बहुत बड़ा अर्बन एरियाज, सिटीज, मेगालोपोलिस, मेट्रोपोलिस, टेक्नोलॉजी सब, ये सिर्फ 275 साल का पुराना है। उससे पहले कुछ नहीं था। एक बहुत बड़ा इवेंट आया था मनुष्य के हिस्ट्री में, मतलब उसका नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उससे ये आया इंग्लैंड में 1750 से लगभग शुरू हुआ और पूरा यूरोप में फैला और अभी दुनिया भर में कहीं ना कहीं मशीन से सब कुछ बनाते हैं। उससे पहले सब कुछ हाथ से बनाया हुआ था, एवरीथिंग वॉज हैंडमेड। हमने एनर्जी शुरू किया यूज़ करने के लिए कोल
1: जी,
0: और मास प्रोडक्शन बहुत तादाद में कुछ बनाने के लिए। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ साइंस के कारण, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के कारण। साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ इसको, जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट या इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के कारण, द एज ऑफ रीजन। तो इतना साइंस फैल गया, साइंस के कारण लोग ज़्यादा जीते हैं, बहुत सुविधा पैदा हुआ है, बहुत मेडिसिन सब कुछ, इतना साइंस प्रोग्रेस किया कि अभी ऐसा एक सिचुएशन चला आया है कि हमारे एग्जिस्टेंस ही बहुत क्वेश्चनेबल है।
1: अच्छा।
0: क्या हम जी सकेंगे या नहीं जी सकेंगे?
1: बिल्कुल।
0: ये प्रश्न मैं और एक बात कह रहा हूँ, ये कैसे मनुष्य के कारण हुआ है? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एनर्जी।
1: वही तो हमने के देश में डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है, ये तो बात है। तो जितना बीस है लोटो कामियों वो सब चलेला, तो ये सब तो लिसेंस और डीजल के बिना नहीं सब चली। तो एक सोल्यूशन का है,
0: हम थोड़ा सा और ज़्यादा बोला बेकर बारे में शुरू कर ली सर, सौभंतिया से उससे शुरू हुआ, कोल से। उसके बाद कोल मतलब जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद 1850 लगभग तब आया पेट्रोल, पेट्रोल जैसे अब गाड़ी का समय आया 20th century में। तो अभी के समय में अभी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है 90% बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम 90%। अभी देखेंगे कितना एयरप्लेन्स घूम रहा है दुनिया भर में, 10,000 to 20,000 घूमते रहे। कितना गाड़ी चल रहा है? 50 million to 100 million सब पेट्रोल से। ओके, मॉरिशस में अपना जो एनर्जी है ज़्यादा करके डीजल से। तो इसका अभी तक वो कैसे बोलते हैं, उसका अल्टरनेटिव सोर्स नहीं आया, और हम यूज़ करते रहते हैं। और क्या हो रहा है कि बहुत जल्द ये परिवर्तन हो रहा है।
1: तो आप जैसे एक ज्योग्राफर है और रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं,
0: हाँ जी,
1: तो आपके हिसाब से कुछ

0: कुछ सोल्यूशन है इस पर?
1: मैं आपको बताऊं, जब मैं इतना ये एग्जांपल दिया कितना हम डिपेंडेंट है ये फॉसिल फ्यूल पर, कितना ये जो फॉसिल फ्यूल लिसेंस डीजल ये सब, ये तो भगवान ने बहुत नीचे धरती में रखी थी, हमने उसको निकाल के जलाया। उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन है, वो कार्बन जब

0: average temperature of the earth अभी climate change से पहले 14 डिग्री था approximately. अभी एक critical situation चला आया है, कैसे बोलते हैं क्रियोल में, the past limit. 1.5 degrees increase, सोच रहे थे 20-25 साल पहले कि 2100 में आएगा, लेकिन लेकिन the shocking news is 2025 में 1.5 डिग्री चला आया है. अब ये क्रिटिकल मतलब देखो क्या हो रहा है फ्रांस में. पिछले सप्ताह से लगभग 1200 लोग मारे गए हैं गर्मी के कारण. द सेम सिचुएशन 600-700 जर्मनी में. तो एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, ये दिस इज अ प्रूफ ऑफ क्लाइमेट चेंज. मतलब आपने पूछा कि कैसे क्या करेंगे, तो अल्टरनेटिव नहीं है. और सभी लोग वो घूमने जाते हैं प्लेन में, लग्जरी गुड्स चाहिए तो कंज्यूम करते हैं, तो कहाँ से वो एनर्जी आएगा. यस, अल्टरनेटिव एनर्जी है लेकिन बहुत कम. ये 90% जो हमारा यूज़ है फॉसिल फ्यूल का, कोई मिरेकल होएगा तब रिप्लेसमेंट आएगा. और सब लोग कहते हैं, कॉन्फ्रेंस होता ही रहता है हर साल. अभी तुर्की में कॉन्फ्रेंस होगा सितंबर या अक्टूबर में, हम ये करेंगे वो करेंगे,
1: वही तो.
0: लेकिन कुछ कोई कुछ नहीं कर रहा है. वो लड़ाई हो रहा है, कितना बम फट रहा है, कितना CO2 जा रहा है एटमोसफियर में, नोबडी इज केयरिंग. ये दुख की बात है. और हम एक छोटा सा टापू है, टापू में रहते हैं मॉरिशस.
1: हाँ, हमारे देश तो बहुत छोटा
0: और ऐसा कि एक पत्थर है बीच पानी
1: में
0: है? और हमारे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. देखिए क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, लेकिन सबसे हमारे लिए वो जो सी लेवल जो है ना, देखो हम अपना मोस्ट ऑफ द कैसे बोलते हैं, अपना जो ज़्यादा करके अपना जो सी साइड है वो धोआ गया है, वो पानी चढ़ चढ़ कर वो इरोजन हो रहा है. और हमारे जो रेट ऑफ कैसे बोलते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज हर साल
1: बढ़ी है,
0: ट्वाइस द एवरेज ऑफ द वर्ल्ड. दुगुना मतलब वर्ल्ड का एवरेज होगा अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीमीटर्स, अभी मॉरिशस में लगभग 6 मिलीमीटर्स हो गया. मैं ये जितना इंफॉर्मेशन मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, ये तो एक्सपर्ट्स का लिखा हुआ है, ये पब्लिश्ड है इंफॉर्मेशन. मेरे यहाँ तो लेबोरेटरी नहीं है, मैं पढ़ के देख रहा हूँ और एवरी ईयर. लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिटिकल स्टेज आ गया है वो टप गया है 2025 से. अब देखो मैं एक अनुभव दे रहा हूँ आपको, मॉरिशस में ये फ्लैश फ्लड हुआ है
1: जी.
0: हो सकता है 2016 में. अभी कह रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि अभी एल नीनो है. एल नीनो एक वेरी सिंपल टर्म्स में एक नेचुरल, कैसे हम अभी तभी कह रहे थे कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये होता है हर 2 साल से 7 साल या 8 साल एल नीनो होता है. लेकिन अभी जब एल नीनो हो रहा है, देखो वो जो मानसून है इंडिया में, मानसून जो हर साल जब मानसून का बारिश हो रहा है, मानसून नहीं आया. अभी मॉरिशस में 2016 में मुझे याद है, 2006 तब एल नीनो था और एक साइक्लोन आया था फौताला. उस ये दैट इज़ अ बिगेस्ट साइक्लोन एवर रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ मेट्रोलॉजी 2016 में फौताला. उसका स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर.
1: तो ये यहाँ मॉरिशस में नहीं, वो तो दूसरे
0: नहीं नहीं, ये इंडियन ओशन में, लेकिन आया नहीं है, आया नहीं. लेकिन अभी कोइंसिडेंस क्या है कि ऐसे कि कोई किसी को डायबिटीज है, उसको खूब कुछ चीनी दे रहे हो खाने के लिए, क्या होगा. तो अभी एल नीनो है और 10 साल बाद देखो अभी एल नीनो है, जब साइक्लोनिक सीजन आएगा तो एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर आएगा.
1: तो यही देखा गया है, देखते हैं जाके समंदर में बड़ा बाढ़ उतर आवेला, जंगल में गर्मी के कारण आग भी लग जाला. तो एक कारण कौन सी सकेला, वो ही
0: ग्लोबल वार्मिंग. मतलब जब वो हीट जो है, जो सूर्य से आ रहा है वो जो हीट, वो बाहर नहीं जा रहा है, वो एक्युमुलेट होते जा रहा है. तो काफ़ी उसका ये कैसे कहते हैं, उसका सॉल्यूशंस है. पहला सॉल्यूशन है वी हैव टू स्टॉप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. एक दूसरा जो है, हमें खूब ट्रीज प्लांट करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, ग्रीन

0: ताकि वो अब्सॉर्ब करे, उसे उदय अब्सॉर्ब करे। ये अभी तो जो हमारा जो कैसे कहते हैं वो फेफड़ा है जो धरती का, अमेजन फॉरेस्ट, बहुत बहुत कम होते जा रहा है, लगभग एक ग्रासलैंड हो जा रहा है वो। तो अभी इतना कॉन्फ्रेंस में मुझे पता है वो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कितना हुआ है, लेकिन कैसे जैसे मैं आपको बताया, कोई साथ में डिसीजन नहीं ले रहा है कि एक ब्रेक डालें ये फॉसिल फ्यूल्स पर।
1: और इसके अलावा पर्यावरण पर भी काफ़ी ऐसी चर्चा में आया कि हम लोगों को प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कहाँ तक सही और कहाँ या रहा
0: प्लास्टिक
1: है?
0: नहीं यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक ये पेट्रोलियम से ही बना हुआ है, हज़ारों साल लगता है उसको डिग्रेड होने के लिए, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सिर्फ प्लास्टिक नहीं, हम जब प्लास्टिक की बात करते हैं तो क्या आता है, साक प्लास्टिक सैकॉन्सू, वो नहीं है, वो सही नहीं है। आप एक सुपरमार्केट में जाइए, कितना प्लास्टिक है, कितना प्लास्टिक बोतल, सब प्लास्टिक है, बहुत प्लास्टिक। एक गाड़ी में कितना प्लास्टिक है, बहुत प्लास्टिक। ओके, तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा उससे ज़्यादा बहुत अच्छा, उससे उससे ज़्यादा अच्छा था बॉटल बुते जैसे कहते हैं। ओके, तो मुझे याद है बहुत दिन पहले मैं एक जगह गया था इंडिया में, भारत में, ऊटी 2002 में। वहाँ पर उस समय प्लास्टिक का बैन था, अभी तक। तो कितना प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। तो प्लास्टिक कंट्रीब्यूट होता है, और ऐसा बहुत से जगह है जहाँ पर वो समुद्र का प्लास्टिक पैसिफिक में इसे इकट्ठा होता है, वो देखने लायक है। ये सब बनाए हुआ है और लोगों का हैबिट है प्लास्टिक है फेंक दो, हमारे यहाँ नहीं चाहिए। तो ये सब बहुत समय लगता है डिग्रेड होने में।
1: तो श्रोताओं और दर्शकों से मांग करते हैं इस विषय पर, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, फिर क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, इस पर अगर आपके पास कोई विचार हो या कोई प्रश्न हो, बेझिझक 402-808-5 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: इस प्रोग्राम में आप लोगों का दोबारा स्वागत हम करते हैं और हमारे साथ हैं श्री हेमंत रामगोबिन जी, जो एक मतलब भूगोल वेत्ता भी हैं, जैसे हम बोल रहे थे कि भूगोल के प्राध्यापक है और मॉरिशस विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके। तो हम इनसे बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमने के मॉरिस देश पे कैसे निपटावल जाए सकेला?
2: कैसे निपटावल जाए? देखा हमने के जैसे बोली है बिटवीन 10,000 to 20,000 एयरप्लेन्स, बिटवीन 50 million to 100 million मोटर व्हीकल्स जो ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करें, हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में है लेकिन बहुत कम है, 0.01%, नेग्लिजिबल। लेकिन हम बहुत बड़ा विक्टिम होंगे उसके।
1: तो कैसे?
2: कोई कुछ करेगा वो कर्म हम भरेंगे। वो कैसे? क्योंकि हम छोटा सा एक टापू है बीच समुद्र में, कैसे जब मैंने कहा कि हाँ। ये
1: बहुत छोटा है, एक छोटा पत्थर जैसे है समंदर।
2: वो जो समंदर का लेवल है राइज हो रहा है, हमारा टूरिज्म डिपेंड करता है ये बीचेस पर, बीचेस डिसअपीयर हो रहा है और बहुत लोगों को छोड़ना पड़ेगा जहाँ जहाँ समुद्र के बहुत एकदम नज़दीक रहे हैं। और पूरा ये जो एरिया है बोजितोम्बो से लेकर पॉइंट कानूनी पुस्लाफा ये बेलमो पालमो ट्रूडेलुस बहुत नज़दीक घर है समुद्र से। ऑल दिस बहुत रिस्की हो गया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं तुबिस गया था, तो तुबिस में एक छोटा सा एक होटल है, एकदम होटल मतलब एक रेस्टोरेंट था, वो तो टूट पड़ रहा है वो क्लाइमेट चेंज के कारण, मतलब वो या एटरिस। लेकिन ये जो है सिर्फ बीचेस पर नहीं है, हमारा रोज का जीवन पे, कैसे वो हमारे यहाँ वो जो फ्लैश फ्लड हुआ था किसी को पता नहीं था कि ये हो सकता है पोर्टिस में, इतना बारिश हो जाएगा इतना छोटा समय थोड़ा समय में।
1: मैं तो जैसे ई पोल्यूशन के कारण हमने के फूड प्रोडक्शन भी अफेक्ट होला,
2: सब कुछ फूड प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ है। देखा हाई इस साल क्या हुआ, ये जो बड़ा बारिश होता है नॉर्मली नवंबर टू अप्रैल में नहीं हुआ, इसके कारण कोई कोई वेजिटेबल कैसे आरिकोतान
1: सूखा पर
2: ये सब मिलते ही रहे, टमाटर का भाव भी उतना बढ़ा नहीं। लेकिन ये इसलिए हुआ कि बारिश ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बारिश कम हुआ दूसरा सेक्टर में अफेक्ट होगा। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है सब कुछ पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, क्यों जो फैक्ट्रीज है वो जो काम करने आते हैं वो टोरेंशियल रेन के कारण वो काम पर नहीं जा सकते हैं, वो जो बुजुर्ग है बहुत अफेक्ट हो गए हीट से,
1: स्वास्थ्य पर भी असर,
2: बच्चे लोगों पर ओके। और जब साइक्लोन आएगा तो कितना लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस। अभी एक्सट्रीम साइक्लोन कह रहे हैं कि साइक्लोन बहुत समय में बड़ा हो जाता है, बहुत समय में अभी थोड़ा समय में डिसअपीयर हो जाता है। मैं एक फिगर आपको बताऊँ, मेरे यहाँ पेपर पर है, अप्रैल 2021 में एक दिन में 24 आवर्स में बॉम्बू में 400 मिलीमीटर बारिश आया था। कैसे कहते हैं फ्रांसे में, जुजा में भी इट वॉज नेवर सीन। और पोर्ट लुइस में जब 2013 में 152 मिलीमीटर्स ऑफ रेन इन जस्ट 2 आवर्स, ये है एक्सट्रीम सोवर। अभी तभी मैं फौताला का साइक्लोन का
1: जिक्र किया भी।
2: हाँ, तो फौताला उसमें स्पीड था, मॉरिशस में आया नहीं, ये तो भगवान का शुक्र है, लेकिन बहुत बर्बादी होता। जब से ये ओलांदा गया है तब से साइक्लोन, बड़ा साइक्लोन नहीं आया है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट वी विल हैव ए साइक्लोन इज नियरली 1।
1: तो कहते हैं यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं शायद इस वजह से।
2: नहीं, मेरे ख्याल से अभी एक्शन लेना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, पहले हम घर बनाते थे ये लकड़ी और आयन शीट का, तोल का, उसके बाद हम घर बनाए बीतों का साइक्लोन के कारण। तब जब घर बनाते थे तो मेटल का ओपनिंग्स आते थे, अब जब से वो लामोद आया है एल्यूमिनियम का ओपनिंग, साइक्लोन आया नहीं है, पता नहीं क्या होगा। बड़ा बड़ा प्लेन, बड़ा बड़ा पानो, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इज इट साइक्लोन रेजिस्टेंट? ये सब क्वेश्चंस है। तो एग्रीकल्चर पर, टूरिज्म पर, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारा स्वास्थ्य पर, अभी स्कूल नो स्कूल है, वो ये बच्चों के पढ़ाई पर।
1: अच्छा, मौसम के अनुमान करे के आजकल बहुत कठिन हो गल। हाँ, तो हमने के सब बतावे जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड कितना मदद पहुँचा।
2: हम एगो बात बोला, हम मेथियोलोग नहीं, हम जियोग्राफ हैं, लेकिन हम जानेला कैसे काम होगा। जानेला एगो एगो बहुत कॉमन फ्रेज कहते हैं, मॉडल न्यूमेरिक। मॉडल न्यूमेरिक मतलब थ्योरीज, थ्योरीज फॉर्मूलाज। तो असलियत में जो मेट्रोलॉजी के काम करते हैं वो फिजिक्स के लोग हैं, फिजिक्स उसके वो उसको वो एटमोस्फेरिक फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं। ओके, दीज आर बेसिकली लॉज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो बहुत दिन में वो सब फिजिकल लॉज बनाया गया है, ये सब मॉडल न्यूमेरिक, बहुत समय से, रिसर्च से, अनुभव से, एक्सपीरियंस से, ये जो जितना दुने हैं बातों से, मतलब ढेर जगह से सब लेकर तब मॉडल में हो बनाए। लेकिन मॉरिशस में ये इम्प्रेशन है कि सिर्फ यहाँ पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन है, डेवलप नेशंस में भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल न्यूमेरिक है जो जैसे कहते हैं वो काम नहीं आ रहा है। बहुत थोड़ा समय में ये नीचे का गर्म हवा उठकर कन्वेक्शन मतलब और बारिश बन जाता है, और बहुत थोड़ा कैसी जैसे मैं आपने कहा, आपको कहा कि 400 मिलीमीटर्स इन वन डे 24 आवर्स, दिस इज एन एक्सट्रीम। तो यही है साइक्लोन का ट्रैक भी। देखो एक दूसरा अनुभव मैं दे रहा हूँ, थोड़ा समय पहले एक साइक्लोन था फ्रेजी नाम करके। तो एक साइक्लोन का जन्म होता है और वो डिसिपेट भी हो जाता है। तो फ्रेजी का मतलब लाइफ टाइम नियरली 33 दिन था, 33 डेज, और एक बार जो जामे व्यू इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वो चक्कर लगाते थे, चक्कर लगाता था, चक्कर किसी को समझ नहीं आ रहा था। वो जो मॉडल न्यूमेरिक है
1: नहीं पता उसका अनुमान,
2: कोई नहीं एक्सप्लेन, बिकॉज सब कुछ इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है सिर्फ वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। बहुत सी हीट है, कहाँ जाएगा वो बेचारा हीट? हमको ही मारेगा, हमारे जीवन ही को नाश करेगा। अभी देखो एक मैं सेंसेशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन सच्चाई बात है, ग्लोबल वार्मिंग में एक जो बहुत सच्चाई बात करते हैं और थोड़ा सा एक ग्रुप है जो थोड़ा मॉडरेट बात करते हैं। जब जो सच्चाई बात करते हैं, अभी देखो को किसी के सोच में नहीं है कि फ्रांस जैसे देश में हजारों लोग मारे जाएंगे गर्म के कारण। तो अभी तो 1.5 अभी पिछले साल ऐसा लगता है कि हो गया है, लेकिन अभी वो जो बहुत सच्चाई कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि द वर्स्ट सिनेरियो कैन बी एज अर्ली एज 2065, जबकि

0: 1.5 से 3 डिग्रीज हो जाएगा. अगर 1.5 से 3 डिग्रीज हो जाएगा 2065 में, तो 2100 में क्या होगा? तो कैसू देखो, एक बात मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि मॉरिशस एक पैराडाइज है. ओके, ये दुनिया ही, ये धरती माता ही एक पैराडाइज है.
1: और जब मॉरिशस की बात, डिफॉरेस्टेशन कैसे सकेला ओके, मतलब हमने के एनवायरनमेंट क्या अफेक्ट करी?
0: देखा, डिफॉरेस्टेशन मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जब आप ये फॉरेस्ट बोएंगे, ये पेड़ बोएंगे, तो उसमें एक कार्बन सिंक है, वो ले लेता है, वो जो खींचता है वो. मतलब लॉजिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा. बहुत ऐसे जगह है इस अबंडेंट फील्ड्स, मतलब हमें पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं,
1: डेवलपमेंट
0: के डेवलपमेंट के नाम पे. यहाँ पर बहुत पेड़ था, लेकिन ये जो मेरे दिमाग में वो फिगर है, सिर्फ अबाउट 1% नेचुरल फॉरेस्ट रह गए हैं हमारे यहाँ, और बाकी सब काटा गया है सर. लेकिन मतलब अभी तक हमारे यहाँ ये चांस है, वी हैव द पॉसिबिलिटी टू रिक्यूपरेट.
1: ओके,
0: अब बहुत कुछ कर सकते हैं. अभी मैं कंज्यूमरिज्म के बारे में कहूँगा. कंज्यूमरिज्म कैसे हम रोज़ खरीदने जाते हैं, रोज़ खरीदने, वो खरीद जो सब कुछ जो खरीदते हैं, तो उसमें भी कितना एनर्जी फॉसिल फ्यूल जा रहा है बनाने के लिए. तो वो कंज्यूमरिज्म में एक ब्रेक लाना चाहिए. वी एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा फ्रेंडली बनाना चाहिए. बहुत काम करना है, बहुत काम करना है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत अर्जेंसी है.
1: तो बहुत सारा काम मानव जीवन ही करना पड़ता है. ये जो
0: हाँ मैंने देखा कितना इरोजन हुआ है तो बीच में अभी, लेकिन मैंने बजट में देखा कि ये पैसा वो किया गया है कि वो उसको रोकें, लेकिन बहुत समय हो गया है कि ये बहुत आगे करना चाहिए था. वी आर लूजिंग टाइम. और कैसे मैंने कहा, ये क्लाइमेट एजेंसी हमारे हॉबीज में जितना कुछ फेंकते हैं. देखो मॉरिशस में सभी लोग समुद्र के तट पर जाते हैं, वो खाना पीना होता है सब छोड़ देते हैं. एवरीवेयर वी हैव दिस प्रॉब्लम. तो बहुत से एजुकेशन
1: भाई जी, आगे बढ़ने से पहले एक जो श्रोता को जरा सुन लेते हैं. दीपशिखा ने इशारा किया. हेलो
2: हेलो जी, नमस्ते.
1: नमस्ते जी
2: प्रोफेसर जी, बहुत नमस्ते.
0: नमस्ते जी,
2: आप तो बहुत, आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ हमारे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में
1: जी.
2: देखिए, जब हम धार्मिक तौर पर जाएंगे, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ. मान लीजिए कि हमारे गृहस्थी में एक बच्चा पैदा हुआ.
0: हाँ जी.
2: अब तो समस्या हुई कि अब विछड़न हो गया, मतलब विभाजन, मतलब के तलाक हो गया. तो वो बच्चा इधर जाना चाहिए तो वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो पिताजी अपनी तरफ खींच रहा है. तो खींचते खींचते बच्चा तो मर जाएगा. तो यही तो हो रहा है. मतलब अब दूसरी बात कहना चाहूंगा, देखिए जो प्राकृतिक आपदा हो रही है वो तो होकर रहेगा
1: जी,
2: अंत तो होना चाहिए एक दिन ना. तो जैसे हमारा जीवन है, जन्म है तो मृत्यु भी है. तो मैं बोलना चाहता हूँ हमारे शारीरिक जो कमजोरियां है, हम बोलते शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख. आजकल विशेषकर मानसिक पाप बहुत हो रहे हैं. मन से हम सोचते हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया का मतलब कि है रहो कम्युनिकेशन तो हम बढ़ गया है मोबाइल चाहिए. तो आज हम उसी वही बात हो रही है हमारे वातावरण में, कि हम जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन होता है, वो आकाश में चलता है. वो तो है ना, आदमी जो कुछ सोचता है वो सब वाइब्रेशन फैलता है आकाश में. और इसी कारण मतलब कि पाप बढ़ गए हैं, पाप जो है बढ़ गए हैं. पाप से ही ज्यादा दुख पैदा होता है. आदमी आजकल

0: के नाम पर भी पाखंड बहुत करता है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है मगर उसको धन्यवाद तो करता नहीं, वो मांगता ही रहता है।
1: हाँ,
0: मांगता ही रहता है।
1: मैं आपके बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपका ये जो विचार आपने रखा है उसके बारे में एक बहुत साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से उसका आंसर दूंगा, मानते हैं?
2: अच्छा, आप फोन रख सकते हैं भाई जी।
1: तो आपने हिंदू धर्म के बारे में कहा, मैं कहता हूँ हिंदू धर्म जो है हमारे जो एनवायरनमेंट है एकदम पवित्र है। कैसे बोलते हैं, वो जो नदी का पानी है वो सेक्रेड है, पेड़ सेक्रेड है, आकाश सेक्रेड है,
2: परोपकार होते हैं हमारे जो पेड़, हमारी जो नदियाँ, उनसे हम लोग
1: धरती को माता कहते हैं और सूर्य को भगवान कहते हैं। एवरीथिंग इज सेक्रेड इन हिंदुइज्म। और अभी देखेंगे हिस्ट्री में जितना हजारों साल से वहाँ लोग रहते थे भारत में, इतना कल्चर इतना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो एनवायरमेंट का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है। मेरी माँ कहती थी गर्म पानी कभी धरती पर डायरेक्टली नहीं फेंकना, उनको चोट आती है। क्या होता है असलियत में, साइंटिफिकली वो जो जीव जंतु है धरती में वो मर जाएंगे। दैट इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, गर्म पानी, गर्म तेल, समझते हैं? और ऐसे रात को पेड़ नहीं काटना चाहिए, इतना ये लोगों में रिस्पेक्ट था ये एनवायरमेंट के लिए। पेड़ को, ये पेड़, समुद्र, हम समुद्र में जाके पूजा करते हैं, समुद्र को पूजते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक, ओके। और एक बात, ये जो भाषा कहते हैं, ये जो अभी हम एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड मतलब लोग जहाँ अपने बिहेवियर को कंसिडर नहीं करते हैं, दे डोंट बिलीव इन गुड वैल्यूज, सेल्फिशनेस, ये सब इंडिविजुअलिज्म, सब खुद को खुद के ये विचार सिर्फ देखते हैं, लोगों को नहीं देखते हैं। तो ये सब हुआ है, कैसे होते हैं घोर कलयुग के समय में, तो ये सब होता है।
2: भाई साहब ने भी कहा कि हम लोग पूछते हैं पर मांगते हैं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ देना है तो वो ऊपर वाले तो दे ही रहेंगे।
1: तो
2: जब हम लोग ये ग्लोबल वार्मिंग के घटावे खातिर हमने के जितना जंगल बामोगिस में कैसे ये जंगल एडे करेला
1: नहीं, जैसे तभी आप बोली है कि गांधी जो है वो CO2 जो है कि बस सबसे जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, तो उसको अब्सॉर्ब करता है। कैसे, पहले हमारे यहाँ मैनग्रोव था बहुत, मोंगलिए रोडेज में भी बहुत है, यहाँ पर मैंने देखा कि लिमोन के साइड में काफ़ी फिर से वो उसको गए, लेकिन अभी दुनिया भर में लगभग 50% मोंगलिए डिजापियर हो गया, 50%। लेकिन अगर वो लगाएं फिर से, और मैं ऐसा मेरा विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हमने बहुत पेड़ काट कर ये घर बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए हैं, रास्ता बनाया है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि वो जब ब्रिटिश के राज में, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में वो पेड़ काटना मना था। मुझे थोड़ा थोड़ा ये मुझे आई हैव टू कंफर्म दिस, लेकिन पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है जीव जंतु के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और मेरे विचार से अगर कोई स्पेयर, मतलब कैसे बोलते हैं, तेरा वीड हो गए, तो उसमें पेड़ लगाना चाहिए।
2: ओके, तो हमने के सब बताओ एक कुछ उदाहरण अगर दे सके कि कौन कौन तरह की क्लीन एनर्जी बा।
1: हाँ, क्लीन एनर्जी हमें यूज़ का इलाज है क्लीन एनर्जी। अभी देखवा कितना लोग के यहाँ सुफर सुले है बा, क्लीन एनर्जी है। हमने के पानी नहीं पड़ता गर्म करके कुओं से, एक से देगा तो क्लीन एनर्जी, सोलो एनर्जी बाकर में सरकार बहुत दिन से स्कीम कर लेगा ताकि कुआँ कमती से भी हो क्लीन एनर्जी बा। ये विंड एनर्जी उतना नहीं यूज होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मोरिस में वही क्लीन एनर्जी। और गाड़ी में क्लीन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक कार्स उसका वो जो ये
2: तो ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के इस्तेमाल करने से सचमुच फायदा होगा?
1: नहीं, तो एक डिबेट है ये। देखो, इलेक्ट्रिक कार्स मेरा यहाँ है प्लग इन कार, मतलब उसको प्लग करूँगा घर पे, नहीं तो एक प्लग इन सेंटर में। लेकिन वो जो एनर्जी बन रहा है, वो जो प्लग इन सेंटर में है, वो तो फॉसिल फ्यूल का एनर्जी है। तो वापस हुए बैक टू स्क्वायर वन। तो हमने ये

0: कैसे कहते हैं ये जो मोटर व्हीकल्स है, एयरप्लेन्स है, यूज़ ऑफ कैसे बोलते हैं पेट्रोलियम, केरोसिन एंड सो ऑन, ये फ्रांसीसी में कहते हैं कास्टेट शिनवा। क्या करेंगे, कैसी क्या करेंगे, क्या उपाय होगा, कैसा उपाय है, और हमारा जो एग्जिस्टेंस ही है इट इज़ एट स्टेक, इट्स क्वेश्चनेबल,
1: रिस्क
0: तो पता नहीं क्या होगा। मोस्ट अनसर्टेन पीरियड, जैसे मैंने कहा वो थ्रेशोल्ड तब गया 2025, 1.5 डिग्रीज, मतलब अब से हमारा जीवन हर साल ज़्यादा कठिन होगा। अभी देखो पानी कम होगा, अभी मतलब वो जो आइस आइस शीट्स है ग्रीनलैंड में, आकी ग्रीनलैंड के आसपास अंटार्कटिका सब पिघल रहा है बहुत जोर से, और इतना ड्रॉट सीजन नहीं था, इतना सुखारी नहीं था। सुखारी नहीं होगा तो जीने के लिए दो कुछ दो चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन और पानी।
1: तो भाई हेमंत जी,
0: हाँ जी।
1: यदि मतलब अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य
0: बहुत कठिन होगा
1: कैसा हो सकता है?
0: भविष्य, मतलब फूड का प्रॉब्लम होगा, जैसे मैंने कहा पानी का प्रॉब्लम होगा, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज, अभी चिकनगुनिया मलेरिया हीट के कारण। मुझे याद है अभी अभी लगभग 5-6 साल पहले हमें ठंडी के समय में उतना ज़रूरत नहीं था वो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करने का, अभी ठंडी का ठंड का समय में भी मच्छर है। ये दिस इज़ अ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
1: तो एक दो श्रोता के क्वेश्चन भी है कि क्या जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह रोका जा सकता है?
0: हाँ, रुका जा सकता है, हम ही वी आर रेस्पॉन्सिबल। अभी जैसे कहा वो हम शुरू से वो जो कह रहे हैं कि देखो जलवायु परिवर्तन, हम फॉसिल फ्यूल्स बंद करेंगे कल से एकदम। याद है जब कोविड के समय में कह रहे, जब लॉकडाउन था, वो लोग दुनिया भर से कह रहे थे ए, समुद्र का पानी बहुत साफ़ हो गया, नदी का पानी बहुत साफ़ हो गया, हु इज़ अ पोल्यूटर, कौन पोल्यूट कर रहा है? ए? एक फिलोसोफर कहा था मैन इज़ अ डर्टीएस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, डर्टीएस्ट। वो खुद खुद अपने से स्वच्छ हो जाएगा, तो कौन कौन कौन रोकेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन बना रहे हैं, बॉम्बर्स प्लेन बना रहे हैं, बॉम्ब बस्टर बना रहे हैं, सब कुछ, तो कैसा होगा? सब बिकॉज ऑफ वी आर सेल्फिश, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ खुद जिएंगे, किसी को जीने नहीं देंगे।
1: और एक श्रोता के प्रश्न है, घर में ऊर्जा की बचत कैसे करें?
0: हाँ, ये तो मेरा फील नहीं लेकिन मैं करता हूँ ऊर्जा की बचत। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉनिक ये अप्लायंस ये मेंस पर है तो नहीं यूज़ हो रहा है तो उसको बुझा
1: ऑफ
0: देना
1: कर दो।
0: चाहिए, और एक और दूसरी बात, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैसे बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक स्टोव, तो गैस ज़्यादा बेनिफिशियल है। गैस भी उसका वो जो COD कंट्रीब्यूशन है 50% कम है ये वो जो फॉसिल फ्यूल से, और जब नहीं चाहिए तो नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अब हमें सोचना चाहिए कि इस समय में जैसे हम झकाचक दिवाली करते हैं वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ेगा। अभी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया है, फिर से बढ़ेगा, ये वो है वो सिचुएशन है, तो हमें बहुत सोचना चाहिए कि। और मैं काफ़ी समय पहले इस थिंकिंग के बारे में, जितना जो बल्ब ट्यूब सब कुछ था मेरे यहाँ, सब मैंने LED कहा बल्ब दिया,
1: लेट
0: LED मतलब लेस इलेक्ट्रिसिटी, और जब चाहिए तब यूज़ करने के यूज़ कर देते हैं, नहीं नहीं चाहिए तो उसको नहीं बारना चाहिए।
1: ओके
0: तो हमारे जैसे जैसे हमारे यहाँ वो हमें सोचना चाहिए कि जब वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, हम अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं, अपना
1: तो
0: फ्यूचर वेस्ट कर रहे हैं।
1: बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कैसे बनाया जाए?
0: ये छोटा से सिखाना चाहिए, छोटा ही से स्कूल में, अभी मुझे लगता है सीखते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक्शन में
1: नहीं,
0: उनको
1: स्कूल में
0: अवेयरनेस, क्योंकि
1: ज़्यादा
0: देखो मनुष्य का दिमाग एक ऐसा चलता है कि हमेशा उनको याद ही रहना चाहिए कि हमें नहीं फेंकना चाहिए कुछ लेकर। और एक बात मैंने मैंने नहीं कहा कि जब हम अपना कूड़ा सब
1: करकट
0: कचरा
1: मतलब
0: फेंकते हैं तो उसको उसमें

0: ही करना चाहिए, बॉटल सेपरेट, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में, उनका एजुकेशन उतना नहीं है। मुझे यहाँ से काफ़ी नज़दीक एक जगह था, यहाँ मोका में, यहाँ पर थ्री डी देशे था, तो प्लास्टिक और ये एल्यूमिनियम एंड देन बॉटल और पेपर और नॉर्मल कचरा, तो क्या लोग कहते थे, और लोग और बहुत कोई जाकर वहाँ थ्री डी देशे करते थे, लेकिन वहाँ पर एक डिपोतवा बना दिया ना, तो उसके कारण वो उसको निकालना पड़ा। मतलब सबसे बड़ा काम है एजुकेशन, कैसे हम एजुकेट करें, कैसे छोटा से ही एजुकेट करें, छोटा से बड़े लोग। अब देखेंगे कभी कोई बड़े गाड़ी में जा रहा है लेकिन एक पूरा प्लास्टिक बैग फेंक दिया
1: ये पर। बहुत बढ़िया बात आपने कही अभी कि छोटे से ही उसको। और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं?
0: सबसे बड़ा संदेश ये है कि जैसे कि कोई माता पिता जब उनके बच्चे उनके सामने हैं तो सोचते हैं कि मेरा इच्छा है कि मेरे बच्चे एक दिन बहुत अच्छा से बड़ा इंसान बने, खूब पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, तो ये मतलब फ्यूचरिस्टिक, मतलब कैसे सोचते हैं कि फ्यूचर के बारे में। अभी का वो जो है एक कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। हम सबको, हमें रोज़ सोचना चाहिए कि कैसे मैं ये धरती माता को, मैं उसको संभालूँ कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट। कुछ करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए।
1: अच्छा, इन सारी जानकारियों के लिए हेमंत रामगोविंद जी आपको दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे अभी आपने कहा प्रकृति तो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, जैसे आपने कहा स्वच्छ पानी और सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा। तो याद रखिए, जैसे आपने ये कहा कि धरती हमारी माँ है, तो धरती हमारी हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली बल्कि हमने इसे अपने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। तो इसी संदेश के साथ हम आज की चर्चा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। कादेर, दीपशिखा और रितेश को उनके सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, सुनने के लिए और देखने के लिए। तो शैमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: पशु उतारा ना जाए। अगले छह से नौ दिसंबर के बीच पाए के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट लगेगा। यह गतिविधि पहले जुलाई महीने के आखिर के लिए निर्धारित थी, लेकिन केंद्रीय अफ्रीका में बोला महामारी के फैलाव की वजह से इसे स्थगित किया गया है। इसका आयोजन मॉरिशन सरकार और कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की मिलीजुली पहल पर किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी नेता, अमेरिकी और अफ्रीकी उच्च अधिकारी, वरिष्ठ व्यापारी, निवेशक तथा फाइनेंसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मकसद है व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी मजबूत करना। इस गतिविधि के लिए 2500 से ज़्यादा डेलीगेट्स मॉरिशस आएंगे। पिछले कुछ समय से ये नोट किया गया है कि सेंट जॉन नाइट शेल्टर में अब सबसे ज़्यादा 19 से 44 साल की उम्र के बीच के लोग रहते हैं। बेघर होने की समस्या पहले ज़्यादातर बुजुर्गों से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब ये सामाजिक समस्या कम उम्र के लोगों के बीच भी देखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो मॉरिशस में मुश्किल हालातों में रहने की तेजी से बदलती स्थिति दर्शाती है। इस वास्तविकता के बीच सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। उन्हें लगातार बढ़ती मांगों और मदद की ज़्यादा जटिल आवश्यकताओं से निपटना पड़ रहा है। और विदेश की कुछ खबरें भारती बिहारी के साथ।
1: एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में दो विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनसे लोगों के जिंदा निकलने की संभावनाएं कम होती जा रही है। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति देलसी रोड्रिगेज ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और उधर रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों में आग लग गई है। रशिया यूक्रेन संघर्ष में 4 साल हो गए हैं और कई शांति वार्ता कोशिशों के बावजूद संघर्ष थमने के आसार नहीं दिख रहे।
0: तो ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। रोजे पिजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासे में 88 साल के टीएटीएसओ श्री विष्णुदत्त सुखी, जो विष्णु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और सन इंश्योरेंस और सेंट्रल एजेंसी के पूर्व निदेशक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान रोजे पिजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछित्री की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूरिया 3 PM।

0: नंबर 15 कोसों स्ट्रीट विल मैं कौचे मिली थे हमें कोसों स्ट्रीट विल मैं कौचे मिली थे हमें 52 साल की 52 इयर्स ओल्ड शी शशि कपूर भवनी ज्योति श्री शशि कपूर भवनी ज्योति जो शशि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान इनके बेटे श्री सावन भवन ज्योति के मकान नंबर 15 कोसों स्ट्रीट विलमे कौचे मिली थे ऐसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, 10:06 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और समस्त श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं इस कार्यक्रम में। हमारा सादर प्रणाम। भक्ति धारा कार्यक्रम इस समय से लेकर दिन के 11 तक रेडियो मॉरिशस पे। वैसे श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेकर करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे, उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं, मतलब सभी रुकावटों को दूर करने वाला भगवान। तो चलिए शुरुआती दौर से उनका नाम लेंगे।

चलिए श्रोताओ, 10:11 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। गुरुवार का दिन है आज। आज का दिन जो है समर्पित है भगवान विष्णु को। तो चलिए कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं विष्णु चालीसा सभी भक्तों के लिए।

चलिए श्रोताओं, आपको पता है कि हमारे जो हिंदू धर्म में हम भगवान विष्णु को पालनहार करते हैं, और जो भी कार्य हम करते हैं वो जो है इन सभी कार्यों को पूरा करते हैं। तो चलिए, उनके कई अवतार हुए हैं, कृष्ण अवतार हुए हैं, राम अवतार हुए हैं, और मुख्य अवतारों में हम सब जो है उनकी पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। तो गुरुवार का ये दिन समर्पित है भगवान विष्णु को। चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे।

श्रोताओं, भगवान विष्णु जो है पालनहार है, वैसे हमें सही मार्ग पर चलने की जो है प्रेरणा उनसे हम प्राप्त करते हैं। जब हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो साथ में हम माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करते हैं, और माँ लक्ष्मी जो है हमें धन समृद्धि प्रदान करती है। और आज का दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है कि हम भगवान विष्णु के साथ साथ हम माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। तो इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भक्ति धारा, और भक्ति की धारा बहेगी दिन के 11 बजे तक। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और जब हम भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं तो भगवान राम जो है उनके अवतार हुए हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है भगवान राम पर आधारित इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रही हैं।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओ, 10:33 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में चंद भक्ति गीत हम चला रहे हैं भगवान राम पर आधारित।
2: और आपको पता है कि भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि जो कुछ करते थे वो मर्यादा में रहकर करते थे और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा जो है उनसे प्राप्त करते थे। धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा उनसे हम प्राप्त करते थे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे चंद भक्ति गीत भगवान राम पर आधारित आपके लिए।

बताओ, जब हम भगवान राम के बारे में बात करते हैं तो उनके जीवन में जितने भी आदर्श हुए हैं, श्री राम के आदर्शों को अपनाएं, क्योंकि जहां राम के संस्कार होते हैं वहां मन में शांति, परिवार में प्रेम और जीवन में प्रकाश स्वतः आ जाता है।

तो चलिए श्रोताओं, भक्तिधारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण को भला हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में चन्न गीत जो है आपके लिए हम चला रहे हैं, भगवान कृष्ण पर आधारित।

10:50 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। गुरुवार का दिन समर्पित है भगवान साईं बाबा को भी। जहाँ साईं का नाम है वहाँ भय का कोई स्थान ही नहीं। उनके चरणों में समर्पण ही सबसे बड़ा सुख है और उनका यही संदेश है कि हमें प्रेम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, दान्य पुण्य हमें करना चाहिए और हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन हमें करना चाहिए।

तो चलिए श्रोताओ, 10:55 हो चुके हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रही है। वैसे सुबह सवेरे छः बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आप उर्दू कार्यक्रम सायरा की पेशकश में सुन पाएंगे। वैसे हमारे

मुलाकात फिर से हो रही है 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित होंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: यह वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का, स्टूडियो में आ गया अदिति और भारती, उनसे मिलते हैं, जानते हैं क्या है लेटेस्ट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में डायबिटीज सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इस दिशा में देखभाल से

0: सेवाएं बेहतर करने के वास्ते देश के विभिन्न इलाकों में विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीतू अस्पताल, फ्लाक के साज अस्पताल और पॉम्प्लोमोसिस के शिवसागर रामगुलाम अस्पताल तथा थयोले और फ्लोरियाल के मेडिकल क्लिनिक्स के बाद अब जल्द ही न्यू होव के एरिया हेल्थ सेंटर में एक छठा डायबिटीज एंड वैस्कुलर सेंटर खुलेगा। मकसद है जनता को बेहतर इलाज प्रदान करना। मंगलवार को राष्ट्रसभा में अप्रोप्रिएशन बिल बिना सुधार के पारित किया गया, जिसे बजट 2026-2027 मंजूर कर लिया गया। इस बजट में खाद्य सुरक्षा मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। 25x35 फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार ने अगले 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% हिस्सा स्थानीय स्तर पर ही पैदा करने और आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य तय किया है। फाके की CEO माधवी माधु के अनुसार ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उनका कहना है कि मॉरिशस सभी अपने इस्तेमाल का 70% से ज्यादा खाद्य सामान आयात करता है तथा बीज, खाद और फीटो सैनिटरी उत्पादों के लिए काफी ज्यादा विदेशी स्रोतों पर निर्भर करता है। उनका मानना है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ज्यादा अनुसंधान, नवाचार, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन तथा खेती के लिए जमीन सुलभ करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज 2 जुलाई से वकवा के जॉन केनेडी एवेन्यू पर स्थित तकामाका पुल नए सिरे से खुल रहा है। इस बात की घोषणा सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने कल क्यूपिप में काजियन पुल के दूसरे चरण के उद्घाटन के दौरान की। इस पुल का निर्माण 2 चरणों पर किया गया है, जिसके लिए 5 मिलियन रुपए लगाए गए हैं। कई सालों से इलाके के बाशिंदे इस कम चौड़े पुल के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जिसके कारण विगत में कई हादसे भी पेश आए हैं। विदेश की कुछ खबरें भारती बिहारी के साथ।
1: एक हफ्ता हुआ है जब से वेनेजुएला में 2 विनाशकारी सिलसिलेवार भूकंप पेश आए थे। मरने वालों की संख्या 2300 पार कर गई है। जहां मलबे हटाने का काम जारी है, वहीं इनसे लोगों के जिंदा निकलने की संभावनाएं कम होती जा रही है। अब वहां के लोग खाद्य सामानों और दवाइयों की कमी के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। अंतरिम राष्ट्रपति देलसी रोड्रिगेज ने देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और उधर रूसी ताकतों द्वारा यूक्रेनियन राजधानी कीव पर किए गए वृहद मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हुई है। ये हमला आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया को एक बड़े हमले की धमकी दी थी।
0: तो ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। ब्लॉक C20 NHDC रूट दे पॉम्प्लेमोस लाक्रोजे वाले दे पोएटमे NHDC रूट पॉम्प्लेमोस ला क्रोजे वाले दे पोएटमे 77 साल की 77 years old की मिसेज हुस्ना बानु रामदीन जो हुस्ना बानु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे मागो गली प्लेन वेत के अल ईसान फ्यूनरल सेंटर से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। एवेन्यू नेपच्यून बोसोंज में 62 साल के 62 years old श्री मोहन प्रसाद बिस्तो नारायण जो अनिल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान अविनी नेपच्यून बोसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। रोजे पेजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासमे 88 साल के 88 years old श्री विष्णु दत्त सुखी जो विष्णु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले सन इंश्योरेंस और सेंट्रल एजेंसी के पूर्व निदेशक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे के मकान रोजे पेजानी स्ट्रीट मोग्राविये बोबासमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेचित रिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। ऋषि दयानंद

0: लेन मॉल आशो में ऋषि दयानंद लेन मॉल लाशो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री सुलेश गोकुलक, श्री सुलेश गोकुलक जो सुलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले SSO एन अस्पताल के अटेंडेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजी दोगोज की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो रात 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

अगर तुम बादशाह हो, अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, नातो सलाम और आपके पैगामात। 5251700 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं। ताखीर ना करते हुए आइए सुकून कल्ब के लिए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समात फरमाएंगे सूरह साद की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा नहीं करता। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के साथ एहसान किया जाए और वो अपने मोहसिन के हक़ में ये अल्फाज कहे, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तुझको जज़ाए खैर दे, उसने अपने मोहसिन की पूरी तारीफ कर दी। बहवाला तर्मिजी शरीफ।

ईमान के साथ अमल। एक दफ़ा हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान के साथ कोई अमल बताइए। फरमाया, जो रोज़ी अल्लाह ताला ने दी है उसमें से दूसरों को दे। अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो खुद मुफलिस हो। फरमाया, अपनी ज़ुबान से नेक काम करे। अर्ज़ किया, अगर उसकी ज़ुबान माजूर हो। फरमाया, मगलूब की मदद करे। अर्ज़ किया, अगर वो ज़ईफ़ हो, मदद की क़ुव्वत ना रखता हो। फरमाया, जिसको कोई काम करना ना आता हो उसका काम कर दे। अर्ज़ किया, अगर वो ख़ुद भी ऐसा ही नाकारा हो। फरमाया, अपनी ईज़ा रसाई से लोगों को बचाए रखे। मौज़ सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:48 हो चुके हैं। हमें चंद पैगामात मौसूल हुए हैं न्यूकोव से। फ़ातिमा हानिया पीबक्स के लिए ढेर सारी दुआएं और प्यार भेज रही हैं। इसके अलावा सकीना, जी हाँ सकीना, अपने भाई अजहर और बिल्किस रसाई के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इन दोनों का साथ हमेशा बनाए रखे और उन्हें हमेशा खुश रखे, उन्हें ढेरों खुशियां परवरदिगार अता फरमाए।

मौज़ सामेन, एक और पैगाम भी हमें मौसूल हुआ है। जी हाँ भाई, जावेद करीमुल्ला के लिए करीमुल्ला फैमिली, बहनें नोगिज़ा, गाज़िया, उज़्मा, रेशमा और भाई निज़ाम, ताज़ीम और वालदा फरीदा, ये सब लोग अपने भाई जावेद करीमुल्ला से बहुत प्यार करते हैं और इनके लिए ढेर सारी दुआएं भेज रहे हैं। दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनके भाई को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और ढेरों खुशियां अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, जब कुछ चेहरे सेह तारीख होंगे और कुछ चेहरे रोशन, तब हमें रोशन चेहरे वालों के साथ उठाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

चलिए श्रोताओ, 2:45 हो चुके हैं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है आपकी पसंद कार्यक्रम का, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। तो चलिए कार्यक्रम है आपकी पसंद 4028085 पे आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स जो हैं हमें प्राप्त हो रही हैं। तो चलिए 5251705 पे 5251705 पे आप अपना जो व्हाट्सअप मैसेजेस जो है हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं और फिर सुनने वालों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम कर रहे हैं और कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे

0: आपकी पसंद।
1: तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए मन चाहे गीतों के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। वैसे हमारे साथ इस समय पे है, जी हाँ, इस समय हमारे साथ

जो है आप गांगोप की सुनीता जी हमारा साथ दे रही है, साथ में है मोन जी, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है और आप एक वानियों की रहने वाली है। समस्त फोकिया चंद परिवार के लिए ये अगला गीत और आपके पति के लिए, साथ में आपके सभी बच्चों के लिए अविनाश है, साथ में है अविशा आपकी बहुओं के लिए ये अगला गीत जो है हम सुन पाएंगे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदय। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब बैंक कुछ मामलों में जांच के लिए जानकारियां दे सकेंगे। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का ऐलान किया। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किए बिना कुछ जरूरी जानकारियां FCC को सौंप सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को एक समान बनाना है, ताकि पिछले अप्रैल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में किए गए बदलाव के बाद पैदा हुई कानूनी विसंगति या आपसी टकराव को सुधारा जा सके। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक नया कदम उठाया गया है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल में कई ऐसे नए नियम लाए गए हैं जिनका उद्देश्य पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही इसमें हिंसा के उन रूपों को भी पहचान दी गई है जिन्हें पकड़ना अक्सर मुश्किल होता है। इन नए नियमों में मानसिक और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एम्पावर और रेज ब्रेव गर्ल्स इस नए कानून का स्वागत कर रही हैं। यह कानून ऐसी घरेलू हिंसा पर भी ध्यान देगा जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। राष्ट्रीय सभा ने इस मंगलवार को बिना किसी सुधार के अप्रोप्रिएशन बिल को स्वीकृति दे दी है, जिससे बजट 2026-2027 को अंतिम रूप मिल गया है। प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा प्रमुख रूप से है और इस फूड सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का 25% स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना, साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करना है। और विदेशी खबरें भारती बिहारी के साथ।
2: कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार कतर और पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग अलग बैठकें संपन्न की, जिनमें 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। गुरुवार को एक एक्स पोस्ट में कतर के प्रधानमंत्री ने सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वार्ता शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित थी। यह ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम यात्रा के बाद जारी रहेगी। थाईलैंड के पूर्वी प्रांत में 11 वर्षीय एक लड़के ने तीर्थ

0: यात्रा पर निकले भिक्षुओं में के एक समूह पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में कम 8 भिक्षुओं की मौत हो गई। खबरों के अनुसार 5 भिक्षुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा 14 अन्य घायल भिक्षुओं और को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। टेम्पल रोड आमोरी में 82 साल के 82 साल के श्री माओदे मुदेली वायापुरी, जिन्हें सब लोग राजू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती माया वायापुरी के घर टेम्पल रोड आमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM। सिमिचिया रोड प्लेमायो में 36 साल के श्री विकेश बुधन, जिन्हें सब लोग इशले के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार 4 जुलाई दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती संध्या गाबूजी के घर सिमिचिया रोड प्लेमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 4th of July 2026 at 10 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

सपहर के 3:06 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में शुटाओ, चलिए आपका हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद, आपकी पसंद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम चलाएंगे चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में, जो आप फरमाइश कर रही है। वैसे हमेशा की तरह आपकी फरमाइश सर आँखों पर कार्यक्रम में शामिल है। ये प्यारा सा गीत फिल्म चाहत से दिया गया। इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक विशाने डुमन जी के लिए, साथ में उनके सभी परिवारों के लिए। वैसे आप वाकवा की रहने वाली हैं, ये गीत जाएगा इंदिरा शारदा आपकी बहनों के लिए, आपकी सहेलियों हैं नीला प्रतिभा शोभा और गीता गजादरा। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत विनोद राठौड़ की आवाज़ में।

श्रोताओं, हमारे साथ इस समय श्यामा रघुनंदन जी जुड़ी हुई है और उनकी फरमाइश पे अगला गीत जो है हम चलाएंगे वीना रामफल जी के लिए। विश्वानी दुखी जी हैं और साथ में उन सभी लिसनर्स के नाम जो है बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तो ये गीत जो है आप तहत महमूद और आशा भोंसले की आवाज़ों में सुन पाएंगे। तो चलिए श्यामा जी, साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आपकी पसंद का ये गीत जो है इस कार्यक्रम में हम चला रही है।

चलिए श्रोताओ, आपके पसंद कार्यक्रम सपहर के 3:17 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और अगला गीत जो है हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो है इस समय व्हाट्सएप मैसेजेस पे है सुदेवी जी, और आप वाकवा की रहने वाली हैं। ये गीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले इन सभी लोगों के नाम जी हाँ। आज जो है हम ये गीत चलाने वाले हैं मामा वर्षा के लिए, पापा है विमल, दीदी है नेहा, त्याग के नानी है साथ में है, मामू अश्विन, मामी है देवीना, कज़िन है लक्ष्मी साथ में है रक्षी, मलंगा के है फूफू और साथ में

हैं अनुषा, फूफा है किरण, साथ में है कज़िन केशनी और कृषय भी है, साथ में है प्रनीता, समस्त राम रतन परिवार है, राम गुलाम परिवार है, कुआवो परिवार है और साथ में है गुरनसिन परिवार है। तो इन सभी परिवारों के लिए ये अगला गीत हम चला रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो चलिए हम गीत की ओर बढ़ेंगे। 4028085 पे आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के फ़ोन कॉल्स के लिए। तो हम गीत की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, फिल्म का नाम जो है बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेलाल।

श्रोताओ, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में हमारे साथ इनियम्पा की विद्या जी जुड़ी हुई है। फिल्म का नाम है प्यार किया है तो डरना क्या, और इस फिल्म से लिया गया गीत जायेगा उनकी चाची कुमारी के लिए। उनकी बहन है सती, साथ में है सुरेखा, वेदना, विमला, प्रीति और बबीता। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में हम चलाने वाले हैं ये अगला गीत जो है हम चला रहे हैं। हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और ये अगला गीत हम मागाट्री जी के लिए चला रहे हैं। ड्यूएल फ्रांस की रहने वाली हैं आप, ये गीत आपके बेटे अजय के लिए। और साथ में हैं हमारे साथ राधा जी, पिछले अजय सैंपिया की रहने वाली हैं। केश जी तरखबोन की रहने वाली है, उनकी दो बेटियां हैं नेहा नितिशा है, साथ में उनके दामाद अरविंद, उनके पति हैं आनंद जी। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है मशाल।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मिनिमम आवाज था 19 किलोहर्ट्ज़ पे, ये रेडियो मॉरिशस है। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम, ये आपका अपना प्रोग्राम है, हर रोज़ की भांति ये कार्यक्रम जो है चलता है रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भावे, और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। बहुत ही प्यारा सा गीत है और ये गीत जो है हम चलाएंगे आपके लिए। सरिता जी, सरिता जी जो है गांव बेह की रहने वाली है, ये गीत जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए, समस्त सिरतन परिवार है, उनके सभी बच्चों के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, एक दर भरागीर आपके लिए इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। फिल्म का नाम जो है वो है दर्द, और फिल्म दर्द का ये गीत जो है हम चलाएंगे शहनाया जी के लिए, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, और ये गीत जाएगा उनके नाना जी के लिए जो कि वाकवा के रहने वाले हैं।

3:50 हुए हैं श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लीला जी हैं और लीला जी जो है बुआशरे की रहने वाली हैं, उनका ये मनपसंद गीत इस कार्यक्रम में हम चलाएंगे। ये गीत जाएगा सभी काशी परिवार के लिए और सभी लोचन परिवार के लिए और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के नाम जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। फिल्म का नाम है कोरा कागज़।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। एक अंतिम नजराना हमारे साथ बसंती जी है जुड़ी हुई है बोबासे से, साथ में है आफेज जी जुड़ी हुई है। तो चलिए इन लोगों के नाम जो है ये अंतिम नजराना जो है हम चलाने वाले हैं। तो आपकी पसंद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप भक्ति सागर कार्यक्रम सुन सकेंगे। तो हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भक्ति सागर।
2: गुरुवार 2 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए सपेर के ठीक 4 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति सागर इस कार्यक्रम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और आज का दिन बहुत अच्छे से जा रहा होगा आप सभी के लिए। तो चलिए साथ मिलकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी, डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। अभी के लिए जो है भगवान गणेश का नाम लेते हुए हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

0: कहते हैं एक सच्चे हृदय से जब भी अपने इष्ट को भक्त पुकारता है तो इष्ट जो है भक्त की पुकार सुनकर रह नहीं पाते हैं और चले ही आते हैं भक्त का साथ देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। बस सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारने की आवश्यकता होती है। वो हमें लगता है कि ईश्वर हमारी बातों का अनसुना कर रहे हैं, ईश्वर हमारी पुकार को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, सब कुछ सही समय पर होता है, और अभी के लिए समय हुआ है कि हम बढ़े कार्यक्रम पीयूष धारा की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। तो आइए उनको हम सुनते हैं। पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
1: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ चलिए हम एक गीत से करते हैं।

श्रोताओ, रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि श्रीराम और लक्ष्मण ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पिता दशरथ जी से अनुमति लेकर उनके साथ चल देते हैं। चलते समय महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ को फिर से आश्वासन देते हैं कि वे श्रीराम और लक्ष्मण की स्वयं रक्षा करेंगे। महाराज दशरथ को भली भांति विश्वास होता है कि उनके पुत्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। विश्वामित्र जी तत्व ज्ञानी थे, वे ब्रह्म ज्ञानी थे, इसीलिए पूरी तरह से आश्वस्त होकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी की यज्ञ सिद्धि के लिए भेज देते हैं। अब श्री राम और लक्ष्मण का पूरा उत्तरदायित्व ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पर होता है। जब पैदल सरयू नदी के तट पर वे पहुंचते हैं, तब श्री राम और लक्ष्मण को समझाते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, तुम दोनों को युद्ध के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। आओ, मैं तुम लोगों को बला विद्या और अति बला विद्या की सीख दूं। इन विद्याओं को जानने के बाद ही तुम राक्षसों से युद्ध करने में सक्षम रहोगे। श्रोताओ, विद्वानों का मत है कि शत्रु को कभी भी शक्तिहीन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शत्रु से भिड़ने के लिए सतर्कता से तैयारी की आवश्यकता होती है। गुरुओं की विद्या और ईश्वर के आशीष की भी अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। विश्वामित्र जी श्री राम को सावधान करते हुए कहते हैं कि न च सुप्तम प्रमतम वा धर्ष ईष्यन्ति नै रेताः, कि हे राम, सब विद्याओं की माता बला विद्या और अति बला विद्या है। इस विद्या देवी के आशीर्वाद से तुम्हें थकान, नींद, भूख और प्यास नहीं सताएंगी। तुम्हारा मन और शरीर दोनों सदा ही निरोग रहेंगे। छल कपट का प्रयोग करके राक्षस प्रतिक्षण तुम्हें मारने का प्रयास अवश्य करेंगे, परंतु मेरी सिखाई हुई विद्याएं माता की तरह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। जिस प्रकार माँ की गोद में

सोए हुए बालक की रक्षा माँ करती हैं, उसी प्रकार ये विद्याएं तुम्हारी रक्षा हर पल करेंगी। सावधान और असावधान अवस्था में भी तुम सुरक्षित रहोगे। इतना ही नहीं, इन दोनों विद्याओं को पढ़ लेने से तुम्हारा यश संसार भर में फैल जाएगा। श्रोताओ, ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से एकदम सही कहा था कि महर्षि विश्वामित्र उनके वंश की कीर्ति की वृद्धि करने के लिए श्री राम को अपने साथ ले चलने के लिए आए थे। दोनों भाई ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के चरणों में बैठकर पवित्र सरयू नदी के किनारे बलाविद्या और अति बलाविद्या सीखते हैं और वहीं पर रात को विश्राम करते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अगले दिन प्रातःकाल दोनों भाई जागते हैं, स्नान और आचमन करते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करने बैठ जाते हैं। गायत्री के जाप से ही रघुवंशियों का दिवस आरंभ होता था। इस प्रथा का श्रीराम और उनके अनुज पालन करते थे। गायत्री मंत्र में उनका विश्वास अडिग था। नीति शास्त्री चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि न गायत्रया परो मंत्र, अर्थात गायत्री से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। गायत्री को जो सिद्ध कर लेता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए ऋषियों ने इसे महामंत्र की उपाधि दी है। श्री राम और लक्ष्मण प्रातः की बेला में सरयू नदी के तट पर पहले गायत्री जाप करते हैं, फिर संध्या करके विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर उनके यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। चलते चलते वे उस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं जहां गंगा नदी और सरयू नदी का संगम होता है। उस संगम स्थल पर वर्षों से घोर तपस्या में मग्न ऋषि मुनियों के आश्रम में महर्षि विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण रात्रि में शयन करते हैं। अगले दिन आश्रम वासियों की सहायता से विश्वामित्र जी, श्री राम और लक्ष्मण नौका पर सवार होकर नदी पार करते हैं और एक घने भयानक वन में पहुंचते हैं। उस असाधारण भयंकर वन को देखकर श्री राम ब्रह्मर्षि से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, इतना भयानक वन मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यहाँ के बाज पक्षी भयानक बोलियां बोल रहे हैं। इस घने जंगल में हमें शेर, सिंह, हाथी और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विचित्र प्रकार के पेड़ पौधे भी हैं। इस वन की क्या विशेषता है, कृपा करके आप हमें बताइए। श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राघव, यह वन पहले धनधान्य से भरपूर देश हुआ करता था। यहीं पर मलद और करुष दो समृद्धशाली देश बसा करते थे। यहाँ की प्रजा सुसंपन्न, ज्ञानी और प्रसन्न थी। परंतु सुंदर राक्षस की पत्नी ताड़का ने इन देशों को उजाड़ दिया। ताड़का बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी है। उसमें असंख्य हाथियों की शक्ति है। उसका पुत्र मारीच भी उसी की तरह अत्यंत ही उपद्रवी और महाशक्तिशाली है। वह प्रजा को सताता है, बिना कारण हम साधु संतों को कष्ट देता है, हमारे यज्ञ में विघ्न डालता है, किसी को भी शांति से जीने ही नहीं देता है। अब यह वन ताड़का के वश में है,

इसीलिए इसे ताड़कावन नाम से लोग जानते हैं। हे राम, हमें इसी वन में जाना है। तुम्हें ताड़का को मारकर इस स्थान को मुक्त करना होगा। गो ब्राह्मण हितार्थाय चहि दुष्ट पराक्रमाम। हे राम, गौवों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ताड़का का वध करना बहुत आवश्यक है। तुम क्षत्रिय हो। वेद कहता है कि क्षत्रिय को कपट करने वालों को समाप्त कर देना चाहिए। ताड़का राक्षसी है, आतंक फैलाती है, कठोर हृदय वाली है, सभी को सताती है। तुम ताड़का को मारने में तनिक भी संकोच ना करो। श्रोता भाई बहनों, क्या श्रीराम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करेंगे?

नमस्ते श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। ईश्वर का तो नाम हम अपने हर श्वास पर ले पाते हैं। कभी कभार हम सोचते हैं कि सवेरे अगर हमें समय नहीं मिल रहा है दिया बाती करने के लिए, ईश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने के लिए, तो कोई बात नहीं, दिन में जब भी हमें अवसर मिले हमें छोटे से छोटे अवसर को जो है गंवाना नहीं चाहिए और ईश्वर का नाम जो है लेने के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमारे कण कण में बसे हुए हैं। ईश्वर का नाम तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, ईश्वर का स्मरण तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन समय निकालकर अगर जीवन में अनुशासन हम लाना चाहते हैं तो जी हाँ, ईश्वर की प्रार्थना के लिए एक सही समय होना चाहिए ना। जैसे कि सवेरे उठते हैं तो पूजा प्रार्थना से दिन आरंभ होता है, संध्या के वक्त हम घर में दीपक जलाते हैं ताकि अंधकार को मिटा सके और प्रकाश के द्वारा ईश्वर का जो है आगमन हो हमारे घर में। तो ये भी सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती है जीवन में, इसलिए जब भी इच्छा हो हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मुझे किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे करूँगा। समय निकालने की आवश्यकता है, समय मिलता नहीं है, प्रयास करने की आवश्यकता है। तो चलिए इसी के साथ हम इस अगले भक्ति गीत की ओर बढ़ते हैं और भगवान साईं की आराधना करते हैं। गुरुवार का दिन है,

कहते हैं ईश्वर के नाम में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि जहाँ पर भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं उस जगह से सभी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और आज के समय में जहाँ पर हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है, हम बस जो है ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, हमें धन दौलत ऐश्वर्य चाहिए, ऐसे में हम मानवीय मूल्यों को कभी कभार भूलने लगते हैं, उनके बारे में उतना नहीं सोचते हैं। तो जब भी हम ईश्वर की शरण में जाते हैं कहीं ना कहीं ये हमें मानवीय मूल्यों से जोड़ता है, वो हमें जीवन की सच्चाई को दर्शाता है, वो हमें ईश्वर के और भी करीब ले जाता है। तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा ईश्वर के और भी समीप जाते हैं।

ईश्वर तो आते ही हैं और ईश्वर हमारी सहायता भी करते हैं। और इस एक घंटे के अंतर्गत ईश्वर की इस आराधना में आप सभी श्रोताओं का साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और चलिए इस अंतिम आरती के साथ आप सबका हम धन्यवाद करते हैं, आप सभी श्रोताओं का जिन्होंने भक्ति सागर इस कार्यक्रम में इतने प्रेम से हमारा

साथ दिया, साथ ही हम ईश्वर का भी धन्यवाद करते हैं इस सुंदर जीवन के लिए जो उन्होंने हमें दिया। तो इसी के साथ, इस अंतिम आरती के साथ आज का जो भक्ति सागर कार्यक्रम है वह समाप्त हो जाएगा और 5 बजे जो है आप सुन पाएंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम हमारे साथ। तो जुड़े रहिए रेडियो मॉरिशस पर। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
2: चलिए, सदाबहार गीतों का ये जो प्रोग्राम है, इसे लेकर एक बार फिर हम आप सबके साथ जुड़ चुके हैं रेडियो मॉरिशस पर। आज है गुरुवार 2 जुलाई, शाम के 5:02 हो रहे हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर स्वीकार करें। 4 से 5 तक भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहे। और अब सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। इन गानों के बारे में क्या कहें, ये गाने एवरग्रीन गाने हैं जिन्हें कई साल पहले हम सुनते थे, आज भी सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा सिलेक्शन है कुछ ऐसा ही है, और इन गानों को उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। और चलिए, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अंदाज़ फिल्म के इस गाने के साथ, दिल उसे दो जो जाँ दे दे, जाँ उसे दो जो दिल दे दे। ये जो गाना है इसे आप सुनेंगे रफ़ी साहब, आशा जी और साथियों की आवाज़ों में। तो चलिए, इस खूबसूरत गाने के साथ आज के सदाबहार गीत के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

0: उसे दो,
1: यकीनन दिल उसे जो जो जा दे दे, जा उसे दो जो दिल दे दे। बड़ा ही खूबसूरत सा गाना, और ऐसा गाना कि मानो इस गाने ने इस माहौल को पूरा बना दिया है ना। चलिए, गाने होते ही ऐसे हैं, हमारे मूड को झट से बदल देते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। अंदाज फिल्म का ये जो गाना था, इसका अंदाज कुछ ऐसा ही था। और चलिए इसी अंदाज में आगे बढ़ते हैं। धर्म करम का ये जो अगला गाना है, बिल्कुल तैयार है आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए। तेरे हम सफ़र गीत है तेरे, मुकेश साहब, किशोरदा, आशा जी और साथियों की आवाज़ों में।
2: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

बिल्कुल, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, और ज़िंदगी में बस थोड़ी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। कभी कभार हम ही जो है अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो चलिए, खट्टा मीठा फिल्म का ये जो गाना है आप लोगों के नाम, सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस पर, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया।

जी हाँ बिल्कुल, समय हमेशा से बलवान रहा है और हमेशा रहेगा। और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता है, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता है, समय भी उसका सम्मान नहीं करता है। घर परिवार फिल्म का ये खूबसूरत

0: सतराना अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश जी की आवाज में। घर परिवार की बात की है तो चलिए इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। घर फिल्म से लिया गया लता जी की आवाज में।
1: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: यकीनन बड़ा ही खूबसूरत सा गाना था, नाम फिल्म से लिया गया, चिट्ठी आई है। और 80 के सालों में शायद या ये जो फिल्म आई थी और ये गाना, ये नगमा जो है, इतना पॉपुलर हुआ था। इसे गाया था पंकज उदास साहब ने। नाम फिल्म में संजय दत्त नज़र आए थे, अनुपम खेर थे, मतलब कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी लाइन बड़ी इमोशनल थी और ये गाना तो अपने आप में इतना इमोशनल है कि क्या कहें। आज भी लोग सुनते हैं और जिनसे, जिनका इस गाने से कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई याद जुड़ी है, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति जो है इमोशनल हो ही जाता है, भावुक हो ही जाता है। चलिए, हम यहाँ पर आपको भावुक करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पर इन सदाबहार गीतों के ज़रिए आपका जो है साथ दे रहे हैं, आपके इस समय को और भी यादगार, और भी खूबसूरत, और भी हसीन बना रहे हैं। और चलिए यहाँ पर ऐसे में जोड़ते हैं ये अगला तराना, और अगला जो गाना है कल की आवाज़ फिल्म का ये गीत है, पल दो पल का साथ हमारा। यकीनन आए हैं तो जाना भी पड़ता है, और ना ही आना हमारे बस में होता है, लेकिन ना ही जाना हमारा बस में होता है, लेकिन इस आने और जाने के बीच में ये जो यादें हम बनाते हैं ना, ये जो यादें हम बनाते हैं, ये मायने रखती है किसके साथ हम किस्सा कैसा रिश्ता बनाते हैं, किसके साथ

0: किस तरह का रिश्ता हम जोड़ते हैं, किसके साथ कितने इमोशनल बॉन्ड हमारे हैं, किसके साथ कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, हम जो है अकेले नहीं रह सकते, हमें अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है इस ज़िंदगी को बिताने के लिए। और अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप अपनी दिल की बात कह पा रहे हैं, जिनके साथ आप बात करते हैं, तो वो आपकी बातों को सुनते हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं, आपकी बातों का जवाब देते हैं, तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर आप अपने जीवन में बनाए रखें, क्योंकि ये है तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। अपनों से ही, लोगों से ही जो है ज़िंदगी की खूबसूरती बढ़ती है। और बस कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में।
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

जी हाँ, पल दो पल का ये साथ रहा और पल दो पल का ये साथ समाप्त होने को भी चला, और इसी गीत के साथ जो है सदाबहार गीतों का ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़े रहे 4 बजे से अभी तक, धन्यवाद। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। अगली मुलाकात तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से, शुभ संध्या।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं।

0: और 2 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है। ये मानना है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस के रेटिंग को BAA3 पर रखा है बरकरार। मॉरिशस टेलीकॉम ने साल 2025 में बहुत ही शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 13.5 बिलियन रुपए की दर्ज की है रिकॉर्ड। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के अपवादों को और बढ़ाया जाएगा। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का किया है ऐलान। वित्तीय साल 2026-2027 मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक नया मोड़, कर्ज का धीरे धीरे भुगतान, खर्चों पर नियंत्रण, मेट्रो नेटवर्क का आधुनिकीकरण और तोड़फोड़ को रोकने के लिए नए बड़े कदम। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने मॉरिशस मेट्रो के सुरक्षित और लंबे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया है अपना विजन। और विदेश में वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के एक हफ्ते के बाद मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2,295 हो गई है, जबकि 11,000 से अधिक लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि साल 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है, ये मानना है रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस की सोवरेन रेटिंग को BAA3 पर बरकरार रखा है। भले ही इस रेटिंग एजेंसी ने घाटे को कम करने और सरकारी कर्ज को स्थिर करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की है, परंतु उसका यह भी मानना है कि कई ऐसे खतरे हैं जो इस सुधार के रफ्तार को बिगाड़ सकते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस टेलीकॉम ने साल 2025 में बहुत ही शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 13.5 बिलियन रुपए की रिकॉर्ड दर्ज की है। इसके साथ ही कंपनी ने मॉरिशस को अफ्रीका और एशिया के बीच एक डिजिटल हब बनाने के अपने बड़े लक्ष्य को और मजबूत किया है। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: मॉरिशस टेलीकॉम की वृद्धि जारी। वित्तीय वर्ष 2025 के समापन पर ग्रुप के कारोबार में 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज। नेट प्रॉफिट 1 बिलियन रुपए से अधिक पर बरकरार। ये एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है जिसे उसने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के वास्ते भारी निवेश किए। मॉरिशस टेलीकॉम के CEO विमल गंगादी ने कहा,
2: C'est qu'explique ça, c'est premièrement confiance, confiance qui population est dans dans le brand Mighty, confiance qui est dans Mauritius Telecom, qualité de service qui nous passe beaucoup de temps pour improve. L'année dernière, nous avons investi 2,7 milliards roupies dans ce qu'on appelle CAPEX pour faire que

0: comment dire, nous ban réseau, nous ban infrastructure vin encore plus reliable.
1: अपने वित्तीय परफॉर्मेंस के अलावा कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और शिक्षा सेक्टर के लिए ऑपरेटर नवाचार के साथ उम्मीद रखे हुए हैं।
0: Nous lançons un produit qui s'appelle Mighty GPT, qu'ils ont dit nous-mêmes en enregistré comme de PCVSA dans nos opérations. Certains de nos clients PCVSA dans le domaine de business. Et nous aussi expandons ça, nous appelons ça Mighty GPT Education. L'idée, c'est ban professeurs dans l'école, ils ont des outils IA qui font de sorte que ils sont capables, passent plus le temps, faire ce qu'on appelle personalized learning. Et pour les élèves, ils ont ce qu'on appelle un personalized tutor.
1: इसके अलावा मॉरिशस टेलीकॉम अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान 2026-2029 की बदौलत अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी ला रहा है, जिसका मकसद है मॉरिशस को अफ्रीका और एशिया के बीच एक डिजिटल कॉन्फिडेंस प्लेटफॉर्म की तरह स्थापित करना.
0: Nous là pour servir la population mauricienne, tout d'abord. Donc ça qui nous fait éclairer, nous make sure, comment dire, côté réseau, côté mobile, côté internet, nous avons un service bien fiable. Et là, quand nous sommes au-delà de ça, dans la région, donc dans l'océan Indien et dans l'Afrique, c'est là que nous trouvons nous un rôle qui est capable, bien important. Donc, premièrement, dans le domaine de connectivité même. Donc, nous, en cours avec différentes négociations en ce moment-ci, pour make sure que, comment dire, Maurice, les connecter lui-même à l'Afrique bien, mais aussi à l'Asie. Mais à travers Maurice, l'Afrique s'y a connecté lui-même better.
1: Mauritius Telecom qui ont reçu 1,9 million d'utilisateurs que ces services sont proposés. 5G que coverage que ça, Mauritius et Rodrigues qui 92% d'îlots que lié. 3,94,000 फिक्स्ड लाइन के लिए और 2,88,000 ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के लिए।
2: पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के लागू हो जाने के बाद सड़कों पर सावधानी भी और ज्यादा तेज हो गई है। इसके चलते कंट्रावेंशन की संख्या में एक नया मोड़ आया है। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
3: आंकड़े चिंताजनक है। पिछले 31 जनवरी से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम फिर से शुरू किए जाने के बाद से पुलिस की ओर से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए 16,000 कंट्रावेंशंस दिए गए। पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में सांसद फराद ओमिर के एक प्रश्न का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री उस्मान माहौबंद ने सचेत किया कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का अपराध काफी ज्यादा है, सबसे गंभीर अपराध जिससे पेनाल्टी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इन पिछले दो महीनों में निर्धारित रफ्तार से 15-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए आंकड़ों में 52% की बढ़ोतरी हुई। जहां तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा का है तो इसमें 53% की वृद्धि हुई है। 25 जून तक 850 कंट्रावेंशन दर्ज किए गए। मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा, इन दो कैटेगरियों की रफ्तार से चिंता हो चली है। रफ्तार का सड़क सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब तेजी से गाड़ी चलाते हैं तब ब्रेक लगाते वक्त ब्रेकिंग का फासला ज्यादा लंबा हो जाता है, अतः टकराने की संभावना ज्यादा होती है। और जब तेजी से जा रहे हों तो जिस जबरदस्त तरीके से दूसरे वाहन के साथ टकराते हैं तो ये भी भारी ताकत है। सड़क सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है, इसीलिए अभी रफ्तार पर ध्यान केंद्रित है। लोग भी चिंतित हो चले हैं, क्योंकि लाइसेंस खोने का भी डर है, क्योंकि अंक काटे जा रहे हैं तब बहुत देर हो जाती है। मंत्री ने याद दिलाया कि देश भर में लगाए गए 60 से ज्यादा फिक्स्ड राडार इन अपराधों के बारे में पता चला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार उचित समय पर पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के संभावित बदलावों की जाँच करेगी। मंत्री उस्मान माहौबंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क सुरक्षा के विषय पर कोई समझौता नहीं होगा।
2: अब उतरते हैं फुटबॉल की दुनिया में, जहां पर इंग्लैंड की टीम डीओ कोंगो के खिलाफ मैच में मुश्किल में फंसती हुई नजर आई, परंतु आखिरकार उसने मैक्सिको के साथ राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में लंबे समय तक इंग्लैंड की टीम 1-0 से पीछे चल रही थी, परंतु अंत में हैरी केन ने दूसरी छमाही यानी कि सेकंड हाफ में शानदार 2 गोल दागकर फ्री लाइसेंस को हार से बचा लिया। इंग्लैंड ने यह मैच 2-1 से तो जीत लिया, परंतु टूर्नामेंट में आगे का सफर तय करने से पहले

0: उन्हें अगले दौर में अभी अपनी कमियों पर काम करना होगा। इस मैच में इंग्लैंड की टीम को कोंगो के बेहतरीन गोलकीपर की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस रोमांचक मुकाबले का सीधा प्रसारण कल रात आप सभी ने एमबीसी टेलीविजन के 11 चैनल पर देखा है। अरविंद बिसेसर की रिपोर्ट।
1: मैच की शुरुआत में ही इंग्लैंड को लगा हल्का सा झटका जब कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 7वें मिनट में ही खाता खोलता है। सिपेंगा का गोल, ये उसका पहला गोल है कोंगो के लिए। इसके बाद इंग्लैंड ने भरसक कोशिश की मैच इक्वलाइज करने के लिए। बेलिंगाम कोंगो के गोलकीपर के आगे नाकाम रहा। वान बिसाका ने अपनी टीम को बचाया राशफोर्ड के शॉट पर। इस बीच कोंगो को और एक गोल बनाने का मौका मिला। हैरी केन के अनगिनत प्रयासों पर कोंगो के गोलकीपर पासी कई बार इंग्लैंड को रोकता है। फर्स्ट हाफ में कोंगो 1-0 से आगे। सेकंड हाफ की शुरुआत में इंग्लैंड का दबदबा बढ़ा। राशफोर्ड को निकालकर एंटोनी गोर्डन को भेजा गया। और उसी के क्रॉस पर हैरी केन हेडर से इंग्लैंड के लिए इक्वलाइज करता है। फिर हैरी केन अपनी टीम को जितवाता है। 86वें मिनट पर कोंगो गणराज्य हिम्मत से जी जान से खेली, सम्मान से वर्ल्ड कप छोड़कर जा रही है। इंग्लैंड के लिए अगला मैच मेक्सिको के खिलाफ होगा।
0: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स के रोमांचक मुकाबले जारी हैं, जहां किसी भी बड़े उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैचों का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। स्पेन ऑस्ट्रिया के खिलाफ आज रात 11 बजे से एमबीसी 11 पर सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे, इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। पुर्तगाल क्रोएशिया के खिलाफ खेलेगी कि उसकी टीम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम भी एक्शन में होगी। ये मैच देर रात यानी कि कल सुबह 3 बजे खेला जाएगा। उधर स्विट्जरलैंड अल्जीरिया के खिलाफ ये दोनों टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए कल सुबह 7 बजे मैदान में उतरेंगी। अरविंद बिसेसर की रिपोर्ट।
1: देखा जाए तो स्पेन इस मैच में फेवरेट है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ ला होगा अगर अपने स्टाइल का फुटबॉल खेलता है तो कठिन होगा उसे हराना। स्पेन वैसे इस वर्ल्ड कप में फेवरेट टीमों में से एक है। अभी तक असली रंग नहीं दिखा पाए पर अब गोल स्कोर कर रहे हैं, एक गोल भी कंसीड नहीं किया है। स्पेन ग्रुप एच में पहला स्थान पर आया था जबकि ऑस्ट्रिया ग्रुप जे में से दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना के पीछे। लामिन यामाल की टीम को सावधान रहना होगा क्योंकि ऑस्ट्रिया भी अपने भाग्यों को आजमाएगा। निको विलियम्स, येरेमी पिनो स्पेन के लिए नहीं खेल पाएंगे इंजरी के कारण। ऑस्ट्रिया के कोच राल्फ रागनिक की टीम तैयार है। डेविड अलाबा और नोटोविच ये कुछ खिलाड़ी हैं जो अपना अनुभव ला सकते हैं। इस मैच का सीधा प्रसारण एमबीसी के स्पोर्ट्स 11 पर होगा आज 11 बजे। कल सुबह 3 बजे टोरंटो में पोर्टुगल और क्रोएशिया के बीच आमना सामना। एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरी ओर लुका मोड्रिच, दो अनुभवी खिलाड़ी। पोर्टुगल ग्रुप के में से यहां पर आया है जबकि क्रोएशिया ग्रुप एल में था दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पीछे। वैसे नामी स्टार खिलाड़ी हैं इन दोनों टीमों में। मिडफील्ड में टकराव होगा, कठिन होगा कहना किस टीम की जीत होगी। और कल सुबह 7 बजे स्विट्जरलैंड का सामना अल्जीरिया से। स्विट्जरलैंड 2 मैच जीतकर 1 ड्रॉ करके अपने ग्रुप में टॉप आया था पर अल्जीरिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर ये लोग काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं।
0: फिर से लौटे स्थानीय स्तर पर जहां पर वित्तीय साल 2026-2027 मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक नया मोड़ साबित होने जा रहा है। कर्ज का धीरे धीरे भुगतान, खर्चों पर नियंत्रण, मेट्रो नेटवर्क का आधुनिकीकरण और तोड़फोड़ को रोकने के लिए नए कड़े कदम, इन सब के बीच भूमि परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने मॉरिशस मेट्रो के सुरक्षित और लंबे भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में

0: अपना विजन पेश किया। वे आज दोपहर को पोर्टलुई में क्रॉस रेल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जारी होने के बाद अपनी बात रख रहे थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मेट्रो एक्सप्रेस के फायदे सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। अध्ययन के अनुमान के अनुसार ये मेट्रो नेटवर्क देश को हर साल लगभग 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक फायदा पहुंचा रहा है। अशिता रघु की रिपोर्ट।
1: मेट्रो एक्सप्रेस केवल एक परिवहन सेवा नहीं है। ब्रिटेन की रेल परिवहन परामर्श कंपनी क्रॉस रेल इंटरनेशनल की रिपोर्ट का यही मुख्य निष्कर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार ये नेटवर्क हर वर्ष लगभग 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है। क्रॉस रेल इंटरनेशनल ने कई चीजों का खुलासा किया है, जैसे सरकार को मेट्रो एक्सप्रेस प्रणाली के काम करने से 1.7 बिलियन रुपए प्राप्त होती है, मतलब इसका यूजर बेनिफिट होता है, मतलब स्कूलों, व्यवसायों, अस्पतालों इत्यादि को फायदा होता है। यातायात कम होती है पीक टाइम के दौरान तथा दुर्घटनाओं से भी बचा जाता है। ऊर्जा और प्रदूषण भी कम होती है तथा छोटे ठेकेदारों को भी निर्माण के समय उन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होते हैं।
2: Et ban PME, je bénéficie de ça parce que pendant construction, j'ai une ban contrat, j'ai une capacité de vivre.
1: Network के विस्तार पर कई वर्षों तक निवेश करने के बाद कंपनी ने इस वर्ष अपने ऋण का चरमबद्ध भुगतान शुरू कर दिया है। साथ ही वह अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने के प्रयास भी जारी रखे हुए हैं।
2: Cette année-là, nous commencerons à rembourser notre dette.
1: इस वर्ष से हम कर्ज चुकाना शुरू कर रहे हैं और मेट्रो एक्सप्रेस की चंद ट्रेनों का मरम्मत भी किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार को मेट्रो एक्सप्रेस के कर्ज चुकाने, ट्रेनों की मरम्मत हेतु तथा आम खर्चों के लिए 1.4 बिलियन रुपए देनी होगी, पर एक काफी मोटी रकम हमें भारतीय सरकार की ओर से प्राप्त हो रही है। सेवाओं के आधुनिकीकरण और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही नई टिकटिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी। उस्मान मोहम्मद ने जनता से मेट्रो एक्सप्रेस की अवसंरचना की सुरक्षा करने की अपील की। उन्होंने तोड़फोड़ और उपकरणों की चोरी की घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि इससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होता है और यात्रियों को दी जाने वाली सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।
0: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि बजट 2026-2027 मॉरिशस को अपनी सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाता है, ये मानना है रेटिंग एजेंसी मूडीज का, जिसने मॉरिशस के रेटिंग को BAA3 पर बरकरार रखा है। भले ही रेटिंग एजेंसी ने घाटे को कम करने और सरकारी कर्ज को स्थिर करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की है, परंतु उसका यह भी मानना है कि कई ऐसे खतरे हैं जो इस सुधार के रफ्तार को बिगाड़ सकते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर विवरण रजनी बिकर का।
3: बजट 2026-2027 सरकार की बजट स्ट्रेटेजी का एक अहम पड़ाव है। मूडीज की ओर से पिछले जून महीने के अंत में साकार किए गए मूल्यांकन में इस बात का उल्लेख। रैंकिंग एजेंसी ने पाया कि वित्तीय मजबूतीकरण को लेकर ठोस प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त मूडीज ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की आय को बढ़ाने के वास्ते कदम निर्धारित हैं। इनमें सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने वालों के लिए 35% की नई कर लागू की बात शामिल, डिजिटल सेवाओं के विदेशी सप्लायरों के लिए टैक्सेशन भी शामिल। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी में ढांचागत सुधार भी सम्मिलित। अर्थशास्त्री डॉक्टर भविष जगन्नाथ ने कहा,
4: मूडीज ने पे कमेंसे पर सैल्यूए ले प्रोग्रेस डू पेई एन मैटियर डैसेनिसमेंट बजटेयर ले पे सुनिये ले रपोर्ट ला की ला रिडक्शन डू डेफिसिट बजटेयर आ 3.7% डू पीआईबी। मूडीज पे रिलेव दान सो रपोर्ट के लेक्जीक्यूशन बजटेयर लिन डेपास une prévision soutenue par une baisse de vos dépenses courantes plus marquée qu'anticipée. En conséquence, la ratio de la dette publique par rapport du PIB commence à stabiliser et l'IP inverse ainsi la tendance à la détérioration que Moody's s'y prévoit auparavant.
3: L'agence est prudente. उसका कहना है कि मॉरिशस के लिए एक नकारात्मक दृष्टिकोण BAA3 का नोट बरकरार है। उसका मानना है कि कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। मूडीज के अनुसार

0: घाटे की कमी का एक अहम भाग शागोस द्वीप समूह के समझौते की प्रतीक्षित आय पर भी निर्भर है। इस विशेष आय के बिना घाटा जीडीपी के 5% से नजदीक पहुंच सकता है। इसके अलावा एजेंसी ने पेंशन सुधार से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया, जिसे भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और साथ में हाईली क्वालिफाइड पेशेवरों के लिए नई वित्तीय क्षमताओं के प्रभाव भी हैं और योग्यताओं के पलायन के बढ़ते खतरे भी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के CEO पॉल बेकर ने कहा,
1: are relatively high. It's high time to reform the system. Maybe as an economist, how you view the pension reform in Mauritius?
2: Yes, I mean, so Mauritius, like most countries, is facing an aging population. So a smaller tax base to pay towards and to contribute towards government revenue, and yet higher payouts. And so that is not unusual to be a burden on most countries. So some sort of reform may indeed be needed. Inevitably, maybe not this year or next year, but there will be need to reform the pension system in Mauritius because of this aging population.
1: The policy drift risk mentioned by Moody's, you want to add something else?
2: One of the issues is the changes in taxation in Mauritius. So there is a much higher rate for those that earn quite a lot, and that is likely to affect confidence and spending. And so we can expect, I think, a much lower growth rates than was forecasted in the budget.
0: Moody's ne ye bhi kaha ki Mauritius mein sarvajanik finance mein sudhar is baat par bhi tika hua hai ki sarkar kis tarah aarthik evam rajnitik khatron ka samna karte hue ghoshit sudharon ko amal mein lati hai. अंत में मूडीज ने वैश्विक अर्थतंत्र की अनिश्चितताओं को लेकर सचेत किया, जैसे कि जियोपॉलिटिकल तनाव है, सप्लाई चेन में रुकावटें और रुपए के भाव का डिप्रिसिएशन, जिनका असर देश की वृद्धि की संभावनाओं पर पड़ सकती है।
3: वाकवा के ताकामाका ब्रिज को एक नया रूप दे दिया गया है। लगभग 60 साल पुराना ये पुल लंबे समय से ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बना हुआ था। इसकी हालत ऐसी थी कि विपरीत दिशाओं से आने वाली दो बसें भी एक साथ सुरक्षित तरीके से यहां से नहीं गुजर पाती थी। कई महीनों के काम के बाद इस नए और चौड़े किए गए पुल का उद्घाटन आज सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश द्वारा किया गया। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: वाकवा और लामारी को जोड़ने वाले इस मार्ग से हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरती हैं, लेकिन अब तक ताकामाका पुल से होकर गुजरना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ था। पुराना पुल मौजूदा यातायात के लिए काफी तंग हो गया था, विशेषकर बसों के आमने सामने आने पर आवाजाही मुश्किल हो जाती थी। साथ ही पुल की संरचना भी जर्जर होने लगी थी, इसलिए पुल का पूरी तरह पुनर्निर्माण किया गया और इसे चौड़ा किया गया। इस पुल की चौड़ाई 5.420 मीटर हुआ करता था, अब निर्माण के बाद इसको 6.750 मीटर तक बढ़ाया गया है। ये पुल पहले से ही नीचे से ढहने लगा था, लोहे दम तोड़ने लगे थे, पर मरम्मत के दौरान इसे पूरी तरह मजबूत बनाया गया है। नई व्यवस्था से खासकर व्यस्त समय में यातायात प्रबंधन और आसान हो जाएगा। ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी वाहन जोल से निकलते हुए सावोई की ओर बढ़ते हैं, इसी मार्ग से जाते हैं। ये एक रणनीतिक जगह है जहां बहुत बाशिंदे और कारोबार मौजूद हैं। प्रतिदिन कई हजार वाहन यहां से गुजरते हैं। जब निर्माण कार्य जारी था तो एक डायवर्शन लाया गया था जिसके कारण यातायात में रुकावट हो रही थी, अब सब सुगम हो गया है। वाहन चालकों ने भी इस बदलाव का स्वागत किया। इस नए पुल के साथ अधिकारियों को उम्मीद है कि वाकवा क्षेत्र की प्रमुख यातायात समस्याओं में से एक का स्थायी समाधान होगा और लोगों को अधिक सुगम, सुरक्षित तथा आज की यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप सफर मिल सकेगा।
3: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे में अब बैंक सीक्रेसी के

अपवादों को और बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब बैंक कुछ मामलों में जांच के लिए जानकारियां दे सकेंगे। सरकार ने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग एक्ट में एक बदलाव करने का ऐलान किया है। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किए बिना कुछ जरूरी जानकारियां एफसीसी को सौंप सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को एक समान बनाना है, ताकि पिछले अप्रैल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में किए गए बदलाव के बाद पैदा हुई कानूनी

जा सके। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक नया कदम उठाया गया है, डोमेस्टिक अब्यूज बिल में कई ऐसे नए नियम लाए गए हैं जिनका मकसद पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही इसमें हिंसा के उन रूपों को भी पहचान की गई है जिन्हें पकड़ना अक्सर मुश्किल होता है। इन नए नियमों में मानसिक और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एम्पावर और रेज ब्रेव गर्ल्स इस नए कानून का स्वागत कर रही है। ये कानून घरेलू हिंसा पर भी ध्यान देगा जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं एक ऐसे कारीगर के बारे में जो अब एक टेक एंटरप्रेन्योर बन गया है। जी हाँ, आज वे एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी के मालिक हैं जिसे निवेशकों से बड़ी सफलता मिल रही है। क्राफ्टी कंपनी के संस्थापक ब्रेनो लुगाला को अपनी स्टार्टअप के लिए अब तक 7 मिलियन रुपए का निवेश मिल चुका है। उन्हें ये कामयाबी इसीलिए मिली क्योंकि उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन और सहारा मिला। विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के एक हफ्ते बाद जान माल के नुकसान के आंकड़ों में नया बदलाव आया है। इसका मतलब ये है कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2295 हो गई है, जबकि 11,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने बड़ी त्रासदी के बाद कल 7 दिनों से राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उधर रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया। इसके कारण भीषण विस्फोट हुए और कीव कई घंटों तक हिलता रहा। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख ने बताया कि हमलों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, खासकर सेंट्रल प्लाटो पर, जबकि कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार, खासकर दक्षिणी पश्चिमी समुद्र के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समुद्र में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्यास्त 5:41 पर, जबकि कल सूर्योदय लगभग 7:45।

0: तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। रेड स्टार लेन तियागोश में, रेड स्टार लेन तियागोश में 70 साल के 70 years old के जनाब मोहम्मद इकबाल जबू, जिन्हें सब लोग बाय इकबाल के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज रात के साढ़े आठ बजे उन्हीं के मकान रेड स्टार लेन तियागोश से निकाल कर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। Funeral tonight at 8:30. SSR Lane.

pour la chair Notre-Dame. Et c'est Saulin pour la chair Notre-Dame, 75 salki, 75 years old ki, Shrimati Krishnauti Tilu. Shrimati Krishnauti Tilu. पैदाशी नाम जिलाल और जिन्हें सब लोग रानी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री नीलेश तिलू के घर ऐसे सोलेन पोलाशेया नोट्रडाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशो की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। बुधन रोड पेलग्रैन सेवास्तोपोल में, बुधन लेन पेलग्रैन सेवास्तोपोल में 62 साल की, 62 years old की श्रीमती राजवंती सिमरिक्या, श्रीमती राजवंती सिमरिक्या जिन्हें सब लोग सुनीता के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती मीनाक्षी रघु के घर बुधन रोड पेलग्रैन सेवास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डुमास का श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। कालीचन लेन कारो लालियन वाकुआ में, कालीचन लेन कारो लालियन वाकुआ में 82 साल के 82 years old के श्री हबी मग्नु शिवनाथ, श्री हबी मग्नु शिवनाथ जिन्हें सब लोग पंडुमन के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे उनके बेटे कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री किरण शिवनाथ के घर कालीचन लेन कारो लालियन वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। रामलगन गली बिजुकाप में, रामलगन गली बिजुकाप में 54 साल की 54 years old की श्री धीरज इतु, जिन्हें सब लोग अजय के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उन्हीं के घर रामलगन गली बिजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोंते बेलोम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 1 PM। रॉयल रोड बोबासे में, 89 साल के 89 years old के श्री चंद्रदत्त रामबरन, जिन्हें सब लोग पनन के नाम से भी जानते थे और जो नंबर 13 ए एवेन्यू कॉर्जिनल सुदना कैथोबोन के पूर्व निवासी थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे ला शापेल ऑन एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोलफेरिनो वाकुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में, 76 साल के 76 years old के श्री सुलेश गुकुलक, जिन्हें सब लोग सुलेस के नाम से भी जानते थे और जो SSRN अस्पताल के पूर्व अटेंडेंट थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजोदोरोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। टेम्पल रोड अमोरी में, 82 साल की 82 years old की श्री मौदे मुदेली वायापुरी, जिन्हें सब लोग राजू के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माया वायापुरी के घर टेम्पल रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। Funeral tomorrow at 1 PM. Cimetière Road Plemayon mein 36 saal ki, 36 years old ki Shri Vikesh Budhan, jinhe sab log Ishle ke naam se bhi jante the, unki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal din ke 10 baje unki maa Shrimati Sandhya Rabuji ke ghar

चेयर रोड प्रेमायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन सैटरडे, जी हाँ, एट 10 AM। शिवाला रोड बोआरूज पम्पलेमूसेज में, शिवाला रोड बोआरूज पम्पलेमूसेज में 60 साल के की श्री विश्वजीत बिकम, श्री विश्वजीत बिकम जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार दिन के 1:30 बजे, शनिवार 4 जुलाई को दिन के 1:30 बजे उनकी बहन कुमारी पिंकी बिकन के घर शिवाला रोड बोआरूज पम्पलेमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल ऑन सैटरडे 4th of July एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 5 जुलाई 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक क्यूपिप ओकुले कास्टेल और आंग्रे मौसियाल में और आसपास के इलाकों में जैसे कि लापेरूज कांगुया स्टियलिंग सिवानंदा एवेन्यू लोटस गुलाम हुसैन वुम्ड वुमेड मॉडर्न हारी रोवर रामदीन मिलब्रेव चमन गारों अपाया गोत्रे बागेराची आजारी सिंह एडू अकबर और गानोशो तूफानी बाउंड्री एंसपास कारोल और मौसलमों कंटें गोबिन और सुशों में भी आसपास उनके आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: वार्षिक महोत्सवम के संदर्भ में मॉरिशस तेलुगु महासभा के तत्वावधान में पॉपलबुस के श्री विष्णु आलयम मॉरिशस तेलुगु महासभा के सीट में शुक्रवार 3 जुलाई को विश्वक सेना पूजा होमम और मंत्र पुष्पम का आयोजन कर रहा है।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: 保利求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听。

सादर प्रणाम प्रिय श्रोताओं, एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम। मैं हूं दीविना, आपका साथ देने के लिए और हम सब एक साथ प्रभु की भक्ति, मधुर भजनों तथा प्रेरणादायी विचारों के साथ अपने मन को शांति और आनंद से भरेंगे। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से करते हैं।

जहां श्रोताओं आप सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर रात्रिकालीन प्रोग्राम भजले प्रभु का नाम। वैसे जीवन में सुख तथा दुख दोनों आते हैं, कभी धूप कभी छांव, परंतु जो व्यक्ति प्रभु का हाथ थाम लेता है वह कठिन से कठिन समय में भी टूटता नहीं। ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं। जब हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं तो मन का भय, चिंता तथा निराशा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए कहते हैं, हर सांस में बस जाए प्रभु का नाम, हर मन में जागे प्रभु का धाम। जीवन की हर राह हो आसान, जब संग हो मेरे भगवान।

श्रोताओ, एक संत से किसी ने पूछा, ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देते? संत मुस्कुराए और बोले, हवा भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका स्पर्श हम महसूस करते हैं। उसी तरह भगवान दिखा

आई भले न दे, पर उनका प्रेम, उनकी कृपा तथा उनका संरक्षण हर क्षण हमारे साथ रहता है। इसे कहते हैं प्रार्थना शब्दों से नहीं सच्चे मन से होती है। जहाँ श्रद्धा होती है वही भगवान का वास होता है।

श्रोताओ, जब भी मन बेचैन हो, कुछ क्षण आंखें बंद करके प्रभु का नाम लीजिए, मन स्वतः शांत होने लगेगा। भगवान समय पर सब कुछ देते हैं, कभी पहले नहीं, कभी देर से नहीं, बल्कि बिल्कुल सही समय पर। तो आप ये स्मरण रखिए, दीप बनकर हर दिल में उजाला कर दो, प्रेम तथा विश्वास से जीवन भर दो। रहे सदा प्रभु का आशीर्वाद हमारे संग, हर पल में गूंजे भक्ति का संग। प्रिय श्रोताओ, आज के भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम में बस इतना ही। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य तथा समृद्धि बनाए रखें। हर दिन उनके नाम से शुरू हो तथा उनकी कृपा से पूर्ण हो। तो लेते हैं आपसे विदा, सादर प्रणाम,

हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपने अहले बैत। कुरान करीम और अहले बैत अतहार की मोहब्बत और एहतराम मुसलमानों के लिए बाइस हिदायत है। वाकया करबला हमें अहले बैत के मकाम मर्तबा की याद दिलाता है।

तकते हुकूमत को ठुकराना सबके।

हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिसने इसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम हस्ती हैं और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके फ़र्जंद हैं। इस हदीस से अहले बैत की अज़मत और उनसे मोहब्बत की अहमियत वाज़ेह होती है। शुहदाए करबला इसी मुकद्दस ख़ानदान के चश्मो चिराग थे, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। सामीने कराम, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। खुदा से दुआ है कि वह हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Zindagi ke anmol lamhe, Radio Mauritius ke saath. MBC TV programs ki jhalkiyan.
4: Badtameez, ye khoobsurat khitab kisne diya hame?
5: Hey mister, ye aashiqui ke chochle kahin aur jaake aazmana.
6: Beti jab jawan ho jaye to use badon se poochhe bina ghar se bahar kadam nahi rakhna chahiye.
7: Fateh Khan ki beti ka haath. तुम्हारे हाथ में दिए बगैर हम दम नहीं लेंगे।
8: बेइरादा नजर मिल गई तो
3: शुक्रवार 3 जुलाई को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म सनम बेवफा 1991 की ये मूवी चांदनी और सलमान खान पर फिल्माई गई सनम बेवफा।
8: हाय नादा ये क्या मांग बैठे
3: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
9: माय नेम अमर।
5: माय नेम
9: नाइस मीटिंग यू।
10: तो हो गया ना तेरा इंट्रोडक्शन, चल चल निकल।
5: जाती हूँ तेरी तरह फालतू नहीं हूँ।
11: एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच।
3: शनिवार 4 जुलाई को एमबीसी 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म अंगारे अक्षय कुमार और नागार्जुन पर फिल्माई गई 1998 की ये मूवी अंगारे।
11: तो

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: भोजपुरी तड़का में आज की रात आप सब कोई के बहुत बहुत स्वागत बा। किरण के प्यार भरा नमस्ते स्वीकार करा। आज बीफे के रात्रि हा, जुलाई के दूसरा तारीख और जुलाई महीना के पहला बीफे। आप सब कोई खातिर ये दिन बहुत शुभ रहल। ऐसन शुभकामना के साथ ये रात्रि वेला के शुरुआत करब जा। ये आशा करत है कि मौसम में जोन परिवर्तन हुआ था ओकर ढेर खराब असर आप पर नहीं पड़ा था और मौसम के जो इशारा बा चाहे औसने खाना पीना और ओढ़े पहने के। पहला गीत आप सबको के नाम छोर के मोरिस्वा आतिश भगीरथी के आवाज़ में।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

आज 2 जुलाई के ढेर कोई के घर में खुशहाली के मौसम छैले बा, कहूँ पर शादी ब्याह के समा बंधल बा, कहूँ पर गीत गवाई होता, कहूँ पर शादी के तैयारी चलता, तो दूसर बगल जन्मदिन के उत्सव, जन्मदिन के खुशी मनावल जाता। और ललिता जी अभी त्योली से टेलीफोन करलन और आप बोलत हवा कि आपके नातिन आयुषी के आज जन्मदिन बा और पूरा परिवार मिल के आयुषी के बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना प्रकट करत हवा जा। और ई में आयुषी के 3 गोदादी, उनकर नानी नाना, मौसा मौसी लोग, सब चाचा लोग, खास तौर पर चाचा लोग के नाम आप ले ले हवा। इनकर में हवन विराज, रणधीर और नीरज, और उनकर सब कुजे कुजिन, भाई बहन।

बहन, सबके ओर से आयुषी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। साथ में ललिता जी बोला था वन की आज उनकर छोटी दीदी के भी जन्मदिन बा, तो छोटी दीदी आपके जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामना। और आज 2 जुलाई के जितना कोई के भी जन्मदिन बा, आप सब कोई के हमने के ओर से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। और एक बाद जो घर में शादी ब्याह के समा बंधल बा, आप लोग खातिर भी फरमाइश आल बा, थोड़ा घड़ी में वो भी सुरभ जा।

हैप्पी बर्थडे के साथ साथ जैसे शुरू में बोली ढेर घर में ढेर परिवार में शादी ब्याह के मौका बाद शादी ब्याह के मौसम चला था आजकल, भले ही अभी जो मौसम बा वो कुछ नासाज बा, मौसम के वजह से ढेर कोई के सर्दी जुखाम खांसी ये सब हुआ था, लेकिन जब घर में एगो काज रहेला तब सबके परेला खुशी खुशी होकर मैं भाग लेवे के और ये बात के खास ख्याल रखे कि आपके स्वास्थ्य अच्छा रही, स्वास्थ्य रही तो जहान रही। और अगला गीत खास तौर पर फोंजुसा के उमा जी के ओर से, उमा जी बोला था वन कि आवत दिमास के उनकर नातिन के शादी बा और इसने ही ढेर कोई के घर अंगना में शादी के जो सुर बा शादी के जो ताल बा वो गूंजे लगल बा। आप सब कोई के ये बड़ा अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कोई के घर में खुशी के माहौल पारिवारिक माहौल ऐसने छैले रही, सगे संबंधी के प्यार और हित मित्र के जो अपनापन बा आपके जीवन में हमेशा बनल रही और ख़ास तौर पर दुल्हा दुल्हन के बीच जो प्यार अभी बा वो पूरा जीवन चलते रही।

खाली आज ही नहीं बल्कि आज का के जो समा बंधल बा वो बहुत ही उत्साह होला समा बंधल बा, बहुत खुशी बहुत चाह, जहाँ पर एक तरफ वर्ल्ड कप के जो जुनून बा उछागल बा, रातों रात रात भर रात रात के जग जग के सबको इंतज़ार करता कि कर जीत होई। और जैसे आपके टीम के जीत हुआ था तो घर में घर के साथ साथ फेसबुक पर और पूरा देश ही नहीं बोलो जब पूरा दुनिया में एगो बहुत ही सुंदर माहौल छागल बा। वर्ल्ड कप के यही मकसद है कि जितना राष्ट्र बा जितना देश बा जितना जनता बा सब कोई के इकट्ठा करल जाए, सब कोई एक ही दिशा में सोचन जा जीत के, ऊ चाहे किकर भी जीत रही। और फुटबॉल जैसन खेल में बोलल जला कि जो उत्तम श्रेणी के कला खिलाड़ी बा चाहे ओकरे जीत होए के, तो ई भी वर्ल्ड कप में जे सबसे बढ़िया खेली ओकरे जीत होई, ई बात के आश्वासन हमी सब कोई के बा। अब जहाँ शादी के बात चलल, जहाँ पर जन्मदिन के बात चलता, तो खुशहाली के मौका देखत है जहाँ हर जगह छैले बा। सेजिया मिल से चाची शांता सुकारी बोलत हवन कि उनकर भी नातिन के जन्मदिन बा आज, और आप अपन नातिन के नाम एगो सुंदर गीत सुनने चाहत हवा, और आपके पसंद के गीत ज़रूर चली। आप सुनने चाहत हवा लीलो माथुर की आवाज़ में।

जन्मदिन मनावा। बरिस में एक दिन आवेला तो आपके साथ साथ एक बार फिर जितना कोई के भी जन्मदिन बा, खाली आज ही नहीं, जेकर जन्मदिन काल रहल, हमने के मुलाकात अभी आवत लेंदी के होई, तो अभी से लेंदी तक जेकर भी जन्मदिन बा सप्ताहांत के दौरान, आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और चाची शांता बोलत हवन कि उनकर नातिन के जन्मदिन के शुभकामना उनकर पूरा परिवार देवत हवन जा, नातिन के उनकर माता पिता, पिता के नाम है रवीन, माँ के नाम है किरण, और उनकर चचा लोग के ओर से चचा लोग हवन जा सुदेश, सुजीत, अशोक, आप सब कोई के जन्मदिन के बधाई आपके भतीजी के नाम। तो चला भतीजी के साथ साथ जितना कोई भी जन्मदिन मनावत हो वजह एक बार फिर बहुत बहुत बधाई।

0: प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: बदतमीज, ये खूबसूरत खिताब किसने दिया हमें?
2: ए मिस्टर, ये आशिकी के चौचले कहीं और जाके आजमाना।
3: बेटी जब जवान हो जाए तो उसे बड़ों से पूछे बिना घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए।
4: फतेह खान की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए बगैर हम दम नहीं लेंगे।
5: बेइरादा नजर मिल गई तो।
0: शुक्रवार 3 जुलाई को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म सनम बेवफा 1991 की ये मूवी चांदनी और सलमान खान पर फिल्माई गई सनम बेवफा।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे.
4: अगला जन गीत बा आप सबको के मनपसंद विश्वविख्यात गीत रंभाराम तोहर के आवाज़ में जुबेदा लुतुले की जाए. और ये गीत सुने के चाह रखा था वन वाकवा से भाई अबू. और भाई अबू ये गीत अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस काला चोटी और उनकर दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम करा था वन.

ये बखत आप सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आपके मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का, जो उनकी हर रात के चलेला 9 से 11 बजे के बीच दो घंटा के ये सफ़र, नाम के दो घंटा है लेकिन बहुत एगो छोटा सफ़र है

और देखते देखते आधा जो सफ़र बा हमने के पूरा हो गल, 10:02 हो बा। और जब खुशी के घड़ी रहेला तो वक्त कितना जल्दी जल्दी समाप्त हो जाला एक अंदाज़ा नहीं बुझाला। और जब दुख के वक्त रहेला तब बुझाला कि उस समय कटते नहीं बा। लेकिन भोजपुरी तड़का एगो ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आपके फरमाइश के गीत चलेला एक के बाद एक, और आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेज सबके आधार पर हमनी के जो प्लेलिस्ट पहले से बनल बा वो फिर से बदल ले जाला। और अगला जो गीत चली धरिला चरनिया तोहर सुनीता ननकू के आवाज़ में, ये गीत के फरमाइश बहुत आवेला। और आज शीला जी ये गीत के फरमाइश करत हवन अपन पूरा परिवार के नाम, सब लड़का लोग के नाम, अपन पति के नाम, सब परिवार के जोन सदस्य हवन जा। और आप यही शुभकामना करत हवा कि परिवार के हर एगो सदस्य पर अम्बे माँ के आशीर्वाद हमेशा बनल रही।

रात के 10:10 होलबा और अगला गीत एगो बहुत ही मजाकिया गीत है जो ननद और भौजाई के बीच होवेला। ननद मोरे सोने की चिड़ैया ये गीत सुने चाहत हवन ग्रैंड ग्रुप से सुनीता जी, आप अपन बहिन विमला के नाम ये गीत करत हव जे कोंगोमा से हमने के सुनत हवन और हमेशा सुनेलन। और ये गीत के फरमाइश ख़ास तौर पर अनिता जी फ्लिक ऑफ लाख से करत हवन और ये गीत आप अपन पूरा परिवार के नाम करत हव और पूरा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के टीम खातिर और जितना कोई भी जितना ननद और जितना भौजाई अभी हमने के सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम ये सुंदर गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे, MBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: हेलो,
3: अबे तू फिर आ गया कबाब में हड्डी?
2: मैं हड्डी नहीं हूँ, हड्डा हूँ, अपने डैडी का डड्डा हूँ, डिवोर्स कराने का अड्डा हूँ।
3: एक बहुत बड़ा खड्डा है तू।
4: पल तो पल का ये सफर, पल तो पल का साथ।
0: रविवार 5 जुलाई को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म हद कर दी आपने, 2000 के साल की ये मूवी गोविंदा और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई हद कर दी आपने।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे.
4: भोजपुरी तड़का ई प्रोग्राम के समाप्त हुए में हमनी के संगे खाली अब 40 मिनट बचल बा और 40 मिनट में 5-6 गीत तक चलबे करी. अगला जोन गीत चली ई गीत सुनीता ननकू के आवाज़ में चमेली चमेली तोके हम घुमा देब. ई गीत सुने चाहत हवन अमृता गणेश पितों से और अमृता जी पूरा गणेश परिवार के साथ साथ सोनिया परी और ई लोग के माता पिता विशान और मीनाक्षी के नाम करत हवन. अमृता गणेश के पसिन पर चमेली चमेली.

0: RM3 Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: कुछ कुछ होता है,
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: रविवार 5 जुलाई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 की सबसे बड़ी रोमांटिक मूवी शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई कुछ कुछ होता है।
2: क्या

रात के 10:41 हो गल बा, मतलब कि 11 बजे में लगभग 20 मिनट से कम ही समय बा। और आप लोग साथ देवत हवा जा ई बखत तक 9 बजे से आपके फ़ोन कॉल्स आई के शुरू हो जाला, वो भी भारी संख्या में आपके फ़ोन कॉल्स खातिर, आपके मैसेज खातिर, आपके प्यार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दिलचस्पी के साथ आप ये प्रोग्राम सुनेला वो सच में काबिले तारीफ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसन जब श्रोता रही तभी सकी ऐसन महफिल जमे, और ये खातिर आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आज के ये प्रोग्राम में अभी 3-4 गो गीत और चली, और हम आपसे एकरे संगे विदा चाहब, हमके आज्ञा द। हमने के भेंट फिर से होई भोजपुरी तरका में आवत लेंदी के, और नहीं तो हमने के मुलाकात होइबे करेला हर फजीर के हमारी धरोहर में 8:50 पर। तकाल फजीर के फिर मिलब जा हमारी धरोहर में, और नहीं तो ये प्रोग्राम में मिलब जा आवत लेंदी के। ये रात्रि आप सबको खातिर बहुत शुभ रही, बहुत ही खुशियों भरा रही, उत्साह भरा रही। और वर्ल्ड कप देखे जात हुई बा त बहुत बहुत शुभकामना। जो टीम के सपोर्ट करत हवा वही टीम जीती,

0: सन हमार शुभकामना बा। और चलते चलते आप सब कोई के शुभ रात्रि बोलते जाए, अच्छा नींद सुता, अच्छा सपना देखा, अच्छा विचार संगे जितना आप सुते जाए बा, ता आपके जो नवा दिन के शुरुआत हुई वो भी अच्छा अच्छा बीती। बुरल जरा हर एगो सुबह एगो नवा जीवन है, ता आज के जो दिन रह जे भारी भी होई ता वो समाप्त हो गल, काल के दिन एगो नया मौका रही, एगो नया जिंदगी रही, आप सब कोई खातिर बहुत शुभ रही। ऐसन शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब, धन्यवाद, नमस्ते।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Seven days a week, 24 hours a day.
5: My,
4: this is Radio Marxist.
6: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: माय नेम अमर।
2: माय नेम
1: नाइस मीटिंग यू। तो हो गया ना तेरा इंट्रोडक्शन, चल चल निकल।
2: जाती हूँ, तेरी तरह फालतू नहीं हूँ।
3: एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच।
0: शनिवार 4 जुलाई को एमबीसी 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म अंगारे, अक्षय कुमार और नागार्जुन पर फिल्माई गई 1998 की ये मूवी अंगारे।
3: तो

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: से लौट के आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पुराने गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं होते हैं, ये तो एक एहसास होता है और इनमें मोहब्बत है, दोस्ती है और उम्मीद भी है और ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीने का अंदाज भी है। आज के इस प्रोग्राम में हर गीत के साथ हम लेकर चलेंगे आपको उन दिनों में जब कैसेट रिवाइंड होती थी, रेडियो का इंतज़ार होता था और हर गाना दिल से सुना जाता था। तो शुरू करते हैं यादों का ये खूबसूरत सा सफ़र सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आपके इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल की निशा के साथ।

धीरे चलना। वैसे दोस्तों, अगर दिल कभी उदास होना तो पुराने बॉलीवुड के गीत उसका सबसे खूबसूरत इलाज होते हैं। इन सुरों में एक अजीब सी ताकत होती है जो मुस्कान भी लाती है और आंखों को जरा नम भी कर देती है। इसीलिए तो हम आज सिर्फ गाने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने आए हैं। तो चलिए हर नगमे के साथ एक नई याद और एक नई मुस्कान बांट देते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

एक जमाना था जब शाम होते ही पूरा परिवार रेडियो के पास बैठ जाते थे। हर गीत का इंतजार होता था और हर सुर एक नई खुशी लेकर आता था। आज वही एहसास हम फिर से जिंदा करने आ गए हैं। अगर आप अभी उन दिनों को याद करते हैं तो ये प्रोग्राम सिर्फ आप ही के लिए है मेरी जान। तो आइए पुराने बॉलीवुड के अनमोल गीतों के साथ वक्त को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं आपके अपने ही खूबसूरत से शो में। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी बदल जाती है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ गीत कभी नहीं बदलते। वो आज भी उतनी ही शिद्दत से दिल को छू जाते हैं और जितना पहली बार सुनते वक्त छुआ था। आज हम उन्हीं सदाबहार नगमों का खजाना लेकर आए हैं, तो बस रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और हर गीत को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए।

दोस्तों, यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं। हम हमेशा इस बात पे कायम रहते हैं क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती और ना ही वो गीत जो उन यादों को जिंदा रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर नगमे जो हर जनरेशन के दिल के करीब हैं, चाहे आप उन्हें पहली बार सुन रहे हो या सौवीं बार। यकीन मानिए, हर बार ये गीत एक नया एहसास दे जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस संगीत भरे सफर का हर पल आप दिल से एंजॉय कीजिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: दिल से हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारा साथ दे रहे हैं। हो सकता है कि फिलहाल आप घर पे आराम फरमा रहे हो, तो दैट्स वेरी गुड। आराम फरमाते फरमाते खूबसूरत गीतों का आप मजा तो ले ही रहे हो, और हो सकता है कि अभी आप काम पे हो, तो कुआश टू यू। और हो सकता है कि ड्राइव कर रहे हो, सो ड्राइव केयरफुली। और ड्राइव करते करते चलिए ये नगमा खासकर आपके नाम ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।
1: मोहब्बत का

0: मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता।
1: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए गिनीशा को इजाजत दीजिए, जाने का समय हो गया है, लेकिन लौट कर वापस आएंगे फिर से सुनहरे पल के एक और खूबसूरत से शो में। शुभ रात्रि, शब बखैर।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्ही ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,